मीडियम वेव 205.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के 29वीं तिथि तदनुसार दिनांक 19 जून सन 2026 प्रातः के इस वक्त 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले कुछ पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में

0: भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज का विचार। विषय है जब वक्त बीमार हो। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
2: जब वक्त बीमार हो। वक्त की भी एक तबीयत होती है। किसी का वक्त नासा चल रहा हो और वो व्यक्ति ठीक से अपना काम कर रहा हो फिर भी सफलता संदिग्ध हो जाती है। जब वक्त बीमार हो। वक्त की भी एक तबीयत होती है। किसी का वक्त नासा चल रहा हो और वो व्यक्ति ठीक से अपना काम कर रहा हो फिर भी सफलता संदिग्ध हो जाती है। इसके मायने ये होता है कि वो वक्त ज़रा बीमार चल रहा है। क्या करें जब बुरा वक्त चल रहा हो। पहली बात तो वक्त अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा। समय का एक समीकरण है जिसमें अच्छा बुरा दोनों आ जाते हैं। अगर वक्त बुरा लग रहा हो तो आगे बताए मसलों पर विचार करें। धैर्यपूर्व कर्तव्य। वक्त जब चोट करता है तो सबसे पहले हमारी कर्तव्य

0: शक्ति का ह्रास होने लगता है। हम धीरे धीरे अपने काम से मुंह चुराने लगते हैं और भटक जाते हैं, नशे की जकड़न में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अपना कर्तव्य न छोड़ें, धैर्यपूर्वक अपना कर्तव्य निभाते रहें और मन को संतुलित रखें, हर काम सही समय पर करें। अगर लगता है कि वक्त साथ नहीं दे रहा तो बजाय वक्त से लड़ने के हमें वक्त की आवश्यकताओं को समझना होगा। किस वक्त आपका काम क्या चाहता है इसकी पूरी जानकारी और ध्यान लगाकर वक्त के साथ संगति बैठाकर अपना काम करते रहें। धीरे धीरे वक्त फिर से आपके साथ संगति और सामंजस्य बना लेगा। खाली समय का सदुपयोग। हर एक काम करने वाले के साथ खाली समय भी आता है। इस खाली समय को नष्ट करने की बजाय आप इसका उपयोग कर सकते हैं। माने आपका कार गैराज है और आज छुट्टी है, तो आप गैराज में या घर में अपनी बगिया ठीक कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं, गैराज की सफाई कर सकते हैं। यानी कितने सारे काम हैं जो हम खाली वक्त में कर सकते हैं। ये काम जहां आपके मन को आपके नज़दीक लेकर जाते हैं, वहीं आपको ज़्यादा विश्वासी भी बनाते हैं। आप अपने समय के साथ न्याय करने लगते हैं। ओवर टाइम का उपयोग। कई बार ये देखने में आता है कि काम के घंटों के अधिक होने के कारण ज़रूरी हो जाता है कि हम उसमें और ज़्यादा मेहनत करें। अगर ऐसा है तो समय का विभाजन कर्मानुसार करते हुए प्रत्येक कर्मचारी से सही काम करवाएं, समय को बेमतलब खर्च मत होने दें। ध्यान का सहारा। अगर सुबह काम पर उठने से पहले हम ध्यान का उपयोग करें तो हमारी आत्मा के सामने जीवनचर्या और समय का विभाजन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इस वक्त में आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा काम किस समय करना है और कौन सा काम नहीं करना। वक्त खराब ना करें। जब वक्त की सरणी बिगड़ जाती है तो हम पाते हैं कि हमारा समय कलह, झगड़ों और द्वंद्व में बीतने लगता है। ये बहुत ही खराब आदत है। इससे हमारी कार्य शक्ति घट जाती है। इसलिए बुरे वक्त में आप जितने अच्छे बने रह सकते हैं रहें, अपने आप को अप टू डेट रखें और समय को हंसते खेलते बिताइए। इन बातों के अलावा हमें कुछ पारंपरिक उक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वक्त बदलते देर नहीं लगती। यह उक्ति हमारे सामने विश्वास की वो चाबी धरती है जिसके चलते हम बुरे वक्त के दिनों में उम्मीद से काम करते हैं। और भी ये बहुत ही मार्मिक वाक्य है, देर नहीं लगती, यानी देर है अंधेर का मसला मिट जाता है, आप सकारात्मक ऊर्जा से भर उठते हैं। बुरा वक्त भी शिक्षक होता है। यूं तो पूरी ज़िंदगी अपने आप में एक किताब है और समय अध्यापक, लेकिन अगर वक्त बुरा हो तो उसमें सिखाने की और हमें सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। हमें इस क्षमता का पूरा प्रयोग करना चाहिए ताकि हम बुरे वक्त में बेहतरीन सीख पाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था जब वक्त बीमार हो। वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।

श्रोताओं कहते हैं कि दिन की शुरुआत यदि भक्ति और श्रद्धा से हो तो मन को शांति, आत्मा को ऊर्जा और जीवन को नई दिशा मिलती है। तो आइए ईश्वर के श्री चरणों में हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।

भक्ति वो शक्ति है जो मन को सुकून, विचारों को पवित्रता और जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। आइए इसी भावना के साथ सुनते हैं ये पहला भक्ति गीत।

श्रोताओं, प्रभात की सुबह जब धरती को आलोकित करती है तो मन स्वतः ही ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर उठता है। आइए इस सुंदर प्रभात को और भी मंगलमय बनाते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

श्रद्धा में शक्ति है, विश्वास में विजय है और भक्ति में वो आनंद है जो हर मन को सुकून देता है। जहां भक्ति है वहां शांति है और जहां शांति है वहां सुख है। इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं अगला भक्ति संगीत का गीत।

कहते हैं कि भक्ति मन की वो यात्रा है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और श्रद्धा बोलने लगती है। भक्ति के इन सुरों के साथ कुछ पल आज हमने प्रभु की आराधना में बिताए। कामना है कि यह सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन आपके साथ बनी रहे। आज के कार्यक्रम में आपने अनूप जलूटा, अनुराधा पौडवाल और अनुपमा देशपांडे के स्वर में भक्ति गीत सुने। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है तुलसीकृत रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं बालकांड के दोहा संख्या 169 से 171 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब

कुंभ सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। कार्यक्रम में आज आपने सुना बालकांड के दोहा संख्या 169 से 171 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हमारी सभा में सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय रहेगा कम पानी की फसल अरंडी। जानकारी देंगे दीवान दान रत्नू। लोक भजन सुनेगा सवेरे 6:50 पर और दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा सवेरे 7:00।

फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं हमारी सभा में सवेरे 7:30 पर, सवेरे 10 बजे, दिन में 12:40 पर और दिन में 11:35 पर और दिन में 2:30 पर। सौरभ, ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय रहेगा आवाज की दुनिया का बेहतरीन साथी है आकाशवाणी। वार्ताकार होंगे श्री मुकेश पोपली। सुगम संगीत आप सुनेंगे सवेरे 8:45 पर और लोक संगीत का समय रहेगा सवेरे 9:10। सवेरे 9:15 पर गांधी चर्चा में आज आप सुनेंगे विदेशी माध्यम का अभिशाप विषय पर बापू के विचार। वाचक स्वर होगा श्री रामसाय हर्ष का, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की और संयोजन होगा श्री अमित सिंह का।

एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।

दिन में 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। चर्चा के विषय रहेंगे संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल का निर्माण, दादी नानी के नुस्खे मानसून की शुरुआत में मौसमी बीमारियां और आत्मरक्षा आज के दौर में लड़कियों के लिए जरूरी बेसिक सेल्फ डिफेंस। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता, बाल मन पर सोशल मीडिया का प्रभाव। वार्ताकार होंगी श्रीमती सरोज राठौर। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थनवी व्यास की, संयोजन श्री अमित सिंह का होगा।

हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:10 पर आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित रोजगार मेला 2026 का सीधा प्रसारण कार्यक्रम के समाप्ति तक। ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा संध्या 7:00। चर्चा के विषय रहेंगे खेत में लगाए फलदार छायादार वृक्ष और मृदा सुधार के लिए खेत बचाओ अभियान 1 से 30 जून, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और हमारी जनगणना हमारा विकास। आखिर में आप सुनेंगे मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे परिचर्चा असहयोग आंदोलन नई क्रांति का आगाज। प्रतिभागी होंगे श्री इंद्रभूषण गोयल, डॉ सुखाराम और डॉ ब्रजरतन जोशी। संचालन होगा श्री मधु आचार्य का। रात्रि 10:00 हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम गुलिस्ता आप सुनेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे। कलाकार होंगे जसकरण गोस्वामी।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है कम पानी की फसल अरंडी। वाचक स्वर है श्री दीवानदान रत्नु का।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, पश्चिम राजस्थान में कम पानी की फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है और उसका उत्पादन भी अच्छा रहता है। आज हम बात करते हैं कम पानी की फसल अरंडी की। अरंडी फसल की प्रमुख किस्मों की बात करते हैं तो किसान भाइयों, इसमें अरुणा GSH 4, GCH 5, RHC 1 चार प्रकार की किस्में होती है बीजों की। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं अरंडी की प्रथम किस्म अरुणा की। अरुणा किस्म के अंतर्गत पौधे की ऊंचाई है वो 90 से 120 सेंटीमीटर लंबी होती है और बाली की जी की लंबाई है वो 30 से 50 सेंटीमीटर होती है और इसमें 17 ग्राम 100 दानों का वजन होता है। अरंडी में पकने का समय है वो लगभग किसान भाइयों 150 से 180 दिन का होता है। तेल की मात्रा की बात करें तो इस किस्म के अंतर्गत बीज में 51 से 52% लगभग तेल की मात्रा होती है और उपज है वो किसान भाइयों 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से होती हैं। दूसरी किस्म है GCH 4। इस बीज की किस्म के अंतर्गत किसान भाइयों 120 से 170 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है और इस किस्म के अंतर्गत पकने का समय है वो 210 से 240 दिन तक का होता है। तेल की मात्रा है वो 48% रहती है और 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से उपज प्रदान करती हैं। GCH 5 यह भी प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। इसके अंदर किसान भाइयों 200 से 300 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है और तेल की मात्रा है वो 49% तक होती हैं। इसकी उपज है वो ज़्यादा होती है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से होती हैं। RHC 1 यह किस्म जिसके अंतर्गत तेल की मात्रा 49 से 50% तक होती है और इसकी उपज भी 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टर तक रह सकती है। अब बात करें किसान भैया बीज की मात्रा और बुआई। अरंडी फसल में प्रति हेक्टर 12 से 15 किलो बीज की आवश्यकता होती है। सिंचित क्षेत्र में कतार से कतार की दूरी 3 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट और असिंचित क्षेत्र में कतार से कतार की दूरी 2 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 5 फुट रख सकते हैं। बीज भूमि में 6 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। खाद और उर्वरक। किसान भाइयों अरंडी में सिंचित क्षेत्रों में हम 90 किलो DAP और 50 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट एवं 28 किलो यूरिया बुवाई के समय उर्दे में और 44 किलो यूरिया बुवाई के 25 दिन बाद और 44 किलो यूरिया बुवाई के लगभग 90 दिन के बाद में फसल में देवे। जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो, बरानी क्षेत्र हो, बीकानेर में बरानी क्षेत्र भी ज़्यादा है, उस समय हम बुवाई के समय 25 किलो यूरिया, 45 किलो DAP, 44 किलो यूरिया, 125 किलो सुपर फास्फेट बुवाई के समय देवे और 44 किलो यूरिया बुवाई के साथ समय और बुवाई के 35 दिन बाद भी खड़ी फसल में देवे। अरंडी में सिंचाई किसान भाइयों लगभग 2.5 महीने बाद सिंचाई शुरू करें और फिर 25 दिन के अंतराल में लगभग 5 सिंचाई कर देनी चाहिए। जब तक पौधे लगभग 2 फुट के नहीं हो जाए तब तक समय समय पर खरपतवार जरूर निकालते रहें, निराई गुड़ाई करते रहें। फसल संरक्षण। पत्ती धब्बा एवं झुलसता रोग प्रमुख रूप से होता है। इसके नियंत्रण के लिए 2 मैंकोजेब का पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें तो अरंडी फसल में हम पत्ती धब्बा और झुलसा रोग कम देखने को मिलेगा। सेमी लूपर कुबड़ा कीट यह रोग। कीट की प्रारंभिक अवस्था में छिड़काव करें और आगे दूसरा रोग है वो सफेद

0: मक्खी या हरा तेलिया, इन दोनों के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 लीटर प्रति हेक्टर में छिड़काव करें। और ये तो ही फसल संरक्षण, पौध संरक्षण। कटाई, जब फल हल्के काले हो जाए तब कटाई करें। ध्यान रखना, जब फल हल्के काले हो जाए तब हम कटाई कर सकते हैं अरंडी के अंदर। फलों के पकने का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा चटकने से उपज में हानि होती है और फली से फल है वो छिड़क जाते हैं। पहली तुड़ाई करीब 12 दिन में तथा बाद में हर एक माह के बाद तुड़ाई कर देनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय था कम पानी की फसल अरंडी। जानकारी दे रहे थे दीवान दान रत्नु। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब सुनिए लोक गीत। कलाकार हैं संतोष कुमार जोशी। तो आइए सुनते हैं

विषय था कम पानी की फसल अरंडी। जानकारी दे रहे थे दीवान दान रत्नु। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब सुनिए लोक गीत। कलाकार हैं संतोष कुमार जोशी, तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज में ये लोक भजन।

0: नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमंत्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तरप्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,2,84,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,7,90,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,7,41,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं, पेश है हमारा खास प्रोग्राम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन नमस्कार। आज आपकी रेडियो सखी रेखा भाटी की ओर से। श्रोताओं उठिए, जागिए और मुस्कुराइए, क्योंकि एक खूबसूरत दिन आज आपका इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि जीवन का हर भेद उजागर होने तक, खुशबू को देखूंगा पैकर होने तक, अंदर की उलझन से बाहर होने तक, बात बिगड़ जाती है अक्सर होने तक। चुन लो मन की खातिर सब रंगों के फूल, उम्मीदों की धरती बंजर होने तक। तुमको जिल्लत का बाइस ही समझेगा जिस्म मेरा जख्मों का दफ्तर होने तक। तेरी भी फितरत बर्दाश्त की हद में है मेरे नाजुक दिल के पत्थर होने तक।

यकीनन एक ऐसा गगन और एक ऐसी धरती हो जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार पले। श्रोताओं, कहते हैं कि जीवन तब खूबसूरत नहीं होता जब जैसा हम कुछ चाहें, बल्कि वैसा होता है जब हम प्रकृति के अनुसार खुद को ढालें और खुद को जिएं। श्रोताओं, प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जो एक अच्छे जीवन के लिए भरपूर होता है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में जो तनाव से भरी है, उसमें अगर हम थोड़ा सा वक्त स्वयं के लिए, योग के लिए निकालें, तो निश्चित तौर पर योग, जो कि हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार शरीर को स्वस्थ करने की वो प्रक्रिया है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ

0: जाती है। श्रोताओं, कहते हैं कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करने की एक अद्भुत कला है। योग हमें स्वयं से जोड़ता है और तनाव से दूर ले जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो श्रोताओं, इसी विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक वार्ता। आज के परिप्रेक्ष्य में योग, वार्ताकार हैं संतोष शेषमा। तो आइए सुनते हैं इनकी वार्ता, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की, संयोजन श्री अमित सिंह का।
1: पहले की अपेक्षा आज योग की अधिक आवश्यकता है। पहले पर्यावरण, वातावरण, खानपान, रहन-सहन सभी कुछ आज की अपेक्षा बहुत ही प्राकृतिक था, परंतु आज दूषित वातावरण, प्रदूषित पर्यावरण, फास्ट फूड एवं डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, विटामिन और प्रोटीन रहित खानपान, बदलता परिवेश और विकृत मानसिकता, इन सभी ने हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। आज वैज्ञानिकों ने जहां कई सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं उनके विपरीत प्रभाव ने हमारे स्वास्थ्य को नकारात्मकता प्रदान की है। आधुनिक भौतिकवादी जीवन में प्रत्येक मनुष्य अपने सभी सुखों का मूल धन की लोलुपता ही मानता है। येन केन प्रकारेण उचित व अनुचित उपायों से वह धन प्राप्ति के उपाय ढूंढता है, वह उसी की प्राप्ति के उधेड़ बुन में लगा रहता है। आज के इलेक्ट्रॉनिक एवं इंटरनेट के युग में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का संपूर्ण समय घर हो या कार्यालय, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि पर व्यतीत होता है, जिनके लगातार उपयोग से व्यक्ति मानसिक तनाव व शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित है। उसी का परिणाम है कि मनुष्य एकाकी और स्वार्थी बन गया है। सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों में दूरियां बढ़ गई हैं। रिश्तों व सामाजिक बंधनों की मर्यादाएं धूमिल हो गई हैं, जिनके विभिन्न रूप हमें रोज देखने व सुनने को मिल जाते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप अनेक असामाजिक गतिविधियां यथा चोरी, डकैती, हत्या, दुष्कर्म एवं आत्महत्या जैसे प्रकरण रोज दृष्टिगोचर होते हैं। इसी के साथ मानसिक रोग, चिंता, अवसाद, अनिद्रा, भ्रम एवं अनेक शारीरिक व्याधियां यथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, यकृत रोग इत्यादि हो रहे हैं, जिनका कारण आज की असीमित जीवन शैली व आहार विहार हैं। सभी व्यक्ति गरीब हो अथवा अमीर शारीरिक व मानसिक तनाव से व्यथित हैं, जिसके कारण अपना परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति तो दूर, अपना जीवन भी सम्यक रूप से नहीं जी पा रहे हैं। इन सभी बातों के कारण आज योग शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि योग द्वारा हम मात्र वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी सही सोच एवं सच्चा मार्गदर्शन दे सकते हैं। आधुनिक युग का संकट, बाहरी विकास, आंतरिक पतन। आज का मनुष्य बाहरी रूप से अत्यंत विकसित है, लेकिन आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा है। सुबह मोबाइल से दिन की शुरुआत होती है और रात मोबाइल पर समाप्त होती है। प्रकृति से दूरी बढ़ रही है, शारीरिक श्रम घट रहा है और मानसिक दबाव बढ़ रहा है। फिजियोलॉजी की दृष्टि से ये स्थिति शरीर को लगातार तनाव की अवस्था में रखती है। जब व्यक्ति तनाव में होता है, तब शरीर का हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एवं एड्रिनल सक्रिय हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कोर्टिसोल और एड्रिनलिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं। लगातार बढ़े हुए कोर्टिसोल के कारण रक्तचाप बढ़ता है, रक्त शर्करा बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। नींद प्रभावित होती है, अवसाद, चिंता बढ़ती है, हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। यही आधुनिक जीवन शैली जनित रोगों की मूल जड़ है। योग शरीर का प्राकृतिक संतुलन तंत्र है। योग का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये शरीर को तनाव की अवस्था से निकालकर संतुलन की अवस्था में लाता है। मानव शरीर में स्वायत्त तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो भागों में कार्य करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।

सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तनाव और आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय होता है। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विश्राम और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। योग पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का उच्चारण, ध्यान के अभ्यास से वेगस नर्व सक्रिय होती हैं, हृदय गति नियंत्रित होती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, मानसिक तनाव कम होता है। अर्थात योग शरीर को फाइट फ्लाइट से रेस्ट एंड हील की अवस्था में ले जाता है। आज मानसिक रोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया, आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंता ने मनुष्य को मानसिक रूप से अस्थिर बना दिया है। योग निद्रा और ध्यान का प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बेहतर होती है, निर्णय क्षमता विकसित होती है, भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। मानव शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य हार्मोन के संतुलन पर निर्भर करता है। तनाव की स्थिति में कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जबकि खुशी और शांति से जुड़े हार्मोन कम हो जाते हैं। योग के नियमित अभ्यास से कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, सेरोटोनिन बढ़ता है, डोपामाइन संतुलित होता है, मेलाटोनिन का स्राव बढ़ता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक प्रसन्न, ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्थिर रहता है। आज अधिकांश रोग जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, अनिद्रा, थायराइड, अवसाद आदि। योग इन रोगों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे मधुमेह, मंडूकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तानासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम आदि का अभ्यास करने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है तथा अग्नाशय की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उच्च रक्तचाप, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का उच्चारण, श्वासों पर ध्यान, योग निद्रा आदि उपयोगी हैं। इनके अभ्यास से रक्तवाहिनियाँ शिथिल तथा रक्तचाप नियंत्रित होता है। मोटापा, सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, चक्की चालन क्रिया, नौका चालन क्रिया, पवन मुक्तासन, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि सहायक हैं। इनके अभ्यास से मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है तथा तनाव जनित भोजन की प्रवृत्ति कम होती है। अनिद्रा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का उच्चारण, श्वासों पर ध्यान, योग निद्रा आदि लाभदायक हैं। इनके अभ्यास से मस्तिष्क शांत होता है, गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद आती है। थायराइड, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सिंहासन, उज्जायी प्राणायाम तथा भ्रामरी प्राणायाम आदि विशेष लाभप्रद हैं। इनके अभ्यास से थायराइड ग्रंथि का कार्य सुचारू रूप से होता है। अवसाद, शशकासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, सवासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण, योग निद्रा आदि लाभदायक हैं। इनके अभ्यास से सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ते हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, योग केवल उपचार नहीं है, बल्कि रोगों की रोकथाम का सशक्त माध्यम है। योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस दिन तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे, उसी दिन संसार तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। योग उसी विजय का मार्ग है। मनुष्य के भीतर असीम शक्ति विद्यमान है, आवश्यकता केवल उसे जागृत करने की है। योग उसी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। योग केवल आसन नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। योग का अर्थ है जोड़ना। जैसे दो चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे नदियाँ जाकर समुन्द्र में मिलती हैं, जैसे हम मोबाइल को चार्जर से जोड़ते हैं, वैसे योग हमें शरीर, मन और आत्मा से जोड़ता है। योग हमें प्रकृति से, अपने अंदर की शक्ति से और परमात्मा से जोड़ता है। योग को धागा कहें जो सबको जोड़ता है, शरीर, मन, समाज, प्रकृति, ब्रह्मांड सब अलग लगते हैं, पर योग एक धागा है जो सबको जोड़ता है।

0: शरीर से मन, मन से आत्मा, व्यक्ति से परिवार, भारत से विश्व को जोड़ता है योग। अतः अपने आप के बारे में जानना ही, अपने आप से मिलना ही योग है। आयुर्वेद और WHO दोनों कहते हैं कि बीमारी न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मल क्रिय प्रश्नात्मेंद्रिय मने स्वस्थ इत्ते भी ध्येते। जिस व्यक्ति के दोष धातु मल तथा अग्नि सम हो अर्थात विकार रहित हो तथा जिसकी इंद्रियां मन तथा आत्मा प्रसन्न हो वही स्वस्थ है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही समग्र स्वास्थ्य हैं। WHO और आयुर्वेद दोनों की पूर्ण स्वास्थ्य परिभाषा को साकार करने का शक्तिशाली माध्यम है योग।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता आज के परिप्रेक्ष्य में योग। वार्ताकार थी संतोष शेषमा। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन था श्री अमित सिंह का। श्रोताओं, योग वो यात्रा है जो आपको स्वयं से मिलवाती है और भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को उजागर करती है। साथ ही साथ योग भारतीय संस्कृति की वो अमूल्य धरोहर है जिसने पूरे विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और शांति का मार्ग दिखाया और उसने पूरे विश्व को आज के इस तनाव भरी जिंदगी में फिर से जीने की तमन्ना को जागृत किया है।

जीने की तमन्ना को जगाता यह खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, स्वर था लता मंगेशकर का। तो आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, आज के दिन विशेष की अब हम बात करते हैं। तो आज है संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है संघर्ष वाले क्षेत्रों में यौन हिंसा के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करना और युद्ध की रणनीति के रूप में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों पर होने वाले यौन हमलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और घोषणा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2015 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की और इस दिवस की स्थापना की थी। 19 जून की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1820 अपनाया था और इसके तहत यौन हिंसा को युद्ध और शांति स्थापना से जुड़े अपराध के रूप में मान्यता दी गई थी। श्रोताओं, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के प्रभाव, जिसमें गरीबी, खराब स्वास्थ्य, अवांछित गर्भावस्था और अत्यधिक आघात शामिल है, पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं। संघर्ष में गर्भवती हुई महिलाओं के लिए विकल्प गर्भपात है। युद्ध संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में असुरक्षित गर्भपात मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है। इसलिए यौन हिंसा के परिणामस्वरूप पैदा हुए बच्चों को अक्सर दुश्मन के बच्चे के रूप में कलंकित किया जाता है और कभी कभी उन्हें अपने पूरे जीवन के लिए अपने समुदायों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो श्रोताओं, आज के इस दिन विशेष के लिए, जो कि मुख्य रूप से युद्ध, विद्रोह और संघर्ष के समय यौन हिंसा का इस्तेमाल जानबूझकर समुदायों को आतंकित करने और लोगों को विस्थापित करने या आबादी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है।

यकीनन श्रोताओं, इस धरा पर प्रेम से जीने के लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए। हम इंसानियत और मानवता के लिए कार्य करें, हो सके तो किसी का भला या सहयोग करें। निश्चित तौर पर ये धरा हम सभी के लिए है।

तो श्रोताओं, घड़ी हमें इशारा कर रही है कि सुप्रभात के संग को यहीं देना होगा विराम। उम्मीद है आज की प्रस्तुतियां, विचार और गीत निश्चित रूप से आपके मन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरते हैं, और आप मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। तो फिलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो सुप्रभात के इस अंक को यहीं देते हैं विराम। इजाज़त दीजिए रेखा भाटी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात आकाशवाणी बीकानेर के लिए। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, गीत को लिखा है नीरज ने, संगीत एसडी बर्मन का। फिल्म का नाम है शर्मिली।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी

कार्यक्रम में आप सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है कैफी आजमी ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर, आवाज लता मंगेशकर की।

फिल्म संगीत के सफर में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको अगला गीत। गीत को गाया है यशोदास ने, गीत को लिखा है हेमंती, माफ कीजिएगा, गीत को लिखा है इंदु जैन ने। यशोदास के साथ ही कलाकार हैं हेमंती शुक्ला। फिल्म का नाम है चश्मे बदूर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म कस्मे वादे के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 8 बजने वाले कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर

0: लू और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक

0: खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए PM डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर

0: सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak bharosa kiya ja sake. Aur aise samay mein Bharat vishwa mein ek trusted partner ke roop mein ubhar raha hai.
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 saal ke is kalkhand mein Bharat ka GDP doguna hua hai. Airport ki sankhya doguni hui hai. Universities ki sankhya bhi doguni ho gayi hai. Highway construction

0: consecutive win in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. With this victory, India stormed into the semi-finals by finishing on top of Pool A. India will now face Chile in the semis tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Sunil. The signing of the peace accord between the US and Iran finds front-page coverage in dailies today. Trump, Pezeshkian sign preliminary peace accord, headlines the Statesman, while the Indian Express headline reads, deal ending war gives Iran critical economic lifeline. The Times of India leads with the headline, Versailles the second, Trump rushes where historians would dread to tread. In Paris, Prime Minister Modi has asserted that AI, that is artificial intelligence, means all-inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8:30 हुए हैं। लीजिए सौरभ में सुनिए वार्ता। आवाज की दुनिया का बेहतरीन साथी है आकाशवाणी। वार्ताकार हैं श्री मुकेश पोपली।
3: नींद से जागकर अपना रेडियो खोलते हैं तो एक पीप और उसके बाद एक संकेत ध्वनि सुनाई देती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इस आधुनिक और कंप्यूटर युग में भी इसी ध्वनि को सुनकर अनेक लोग अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। यही संकेत ध्वनि बहुत सी फिल्मों में भी सुनाई देती रही है। इस ध्वनि के उपरांत उद्घोषक वंदे मातरम बोलते हैं और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत सुनाई देता है, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी हाँ श्रोताओं, बात हो रही है आकाशवाणी की, जो अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी का सूत्र वाक्य है और ये अपने उद्देश्य में सफल भी रहा है। पहली बार दुनिया में दिनांक 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई, जिसमें सबसे पहले मुंबई से 23 जुलाई और कलकत्ता से 26 अगस्त 1927 को पहली बार प्रसारण शुरू हुआ। वर्ष 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अर्थात भारतीय प्रसारण सेवा के रूप में इसे 1 अप्रैल 1930 को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। 8 जून 1936 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जिसका श्रेय लॉयनल फिल्डन को जाता है, जो रेडियो के पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग थे। सबसे पहले शॉर्टवेव ट्रांसमीटर आकाशवाणी दिल्ली के लिए 1937 के अंत में लगाया गया। वर्ष 1938 में जब अन्य केंद्रों पर शॉर्टवेव ट्रांसमीटर लगाए गए तो उद्घाटन समारोह हेतु महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने आकाशवाणी नाम से एक बंगाली भाषा में कविता भी लिखकर भेजी। ऑल इंडिया रेडियो के लिए यही नाम बाद में छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर वर्ष 1957 में अपनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद नेहरू जी का भाषण प्रसारित किया गया। देश की जनता ने चैन की सांस ली और अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने का जश्न

मनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी गांधी जी बेचैन थे। वे कुरुक्षेत्र जाना चाहते थे, लेकिन उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के कहने पर वे दीपावली के दिन रेडियो पर बोलने के लिए तैयार हो गए। ये शरणार्थियों के लिए सीधा प्रसारण था। उन्होंने रेडियो स्टेशन को रेडियो घर कहकर संबोधित किया। वो 12 नवंबर 1947 का दिन था और आज भी रेडियो पर इस दिवस को जन प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हो गई, उस दिन के रिकॉर्डिंग में भी गोलियों की आवाज़ रिकॉर्ड है। गांधी जी के निधन का संदेश नेहरू जी, सरदार पटेल और सरोजनी नायडू ने रेडियो के माध्यम से ही प्रसारित किया। आकाशवाणी ने अपने 90 साल में सबका मन जीतने का सफल प्रयास किया। आज़ादी के समय आकाशवाणी के केवल 9 रेडियो स्टेशन थे, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 6 भारत में स्थित थे। बताया जाता है कि इसके बाद आकाशवाणी ने अपने प्रसार की योजना बनाई और उस पर लगातार काम होते रहे। जहां 1950 तक केवल 25 केंद्र थे, वहीं वर्तमान में आकाशवाणी के लगभग 500 केंद्र पूरे राष्ट्र में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में अपना प्रसारण कर रहे हैं। अब तो आकाशवाणी देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखे हुए है और भारत की प्रसारण क्षमता का परचम फहरा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाचार प्रसारित करने के लिए स्थापित इस प्रभाग का विस्तार किया जाता रहा और अनेक संपादकों और समाचार वाचकों ने अपनी ओजस्वी वाणी में श्रोताओं को पल पल की जानकारी देनी प्रारंभ कर दी थी। हिंदी और अंग्रेजी के इन समाचार वाचकों में अपनी आवाज़ से सम्मोहित करने वालों में मेलविल डिमेलो, लोतिका रत्नम, देवकीनंदन पांडे, उर्मिला मिश्र, विनोद कश्यप और अशोक वाजपेयी शामिल रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार वाचकों ने जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। इन समाचार वाचकों में तमिल के लिए एस मुथिराम, सिंधी के लिए हरी जेठवानी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। वैसे समाचार प्रभाग से खुशवंत सिंह, पूर्णम विश्वनाथन, धर्मवीर भारती सहित अनेक विद्वानों के साथ साथ बाद में सईद जाफरी भी जुड़े रहे। साहित्यकारों और आकाशवाणी का चोली दामन का रिश्ता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गद्य लेखक हों या पद्य प्रेमी, सभी ने आकाशवाणी का मान रखा। इस क्षेत्र के लिए जहां हम हरिवंश राय बच्चन का नाम ले सकते हैं, तो वहीं विष्णु नागर, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी जैसे महान लेखकों ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचारों को साहित्यिक दृष्टि दी। सादत हसन मंटो, कृष्णचंदर, उपेंद्रनाथ अश्क तो आकाशवाणी से हमेशा जुड़े रहे। साहित्यकारों के लिए कवि गोष्ठियाँ आयोजित की गई और लेखकों ने कहानी और अन्य विधाओं में भी श्रोताओं को भाव विभोर किया। करतार सिंह दुग्गल का इन सब साहित्यकारों से परिचय रहा, क्योंकि वे स्वयं साहित्य क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध रहे। आकाशवाणी से प्रातः भक्ति संगीत कार्यक्रम आज भी प्रस्तुत किया जाता है। बहुत से केंद्र रामचरितमानस का पाठ भी दैनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इनके साथ ही शास्त्रीय संगीत भी प्रसारित होता है, जो हमारे अनेक संगीत घरानों के बारे में भी जानकारी देता है। भारत में तो शास्त्रीय संगीत को वेदों से जुड़ा माना जाता है। दैनिक रूप से विभिन्न केंद्रों से शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत भी शामिल है। 1952 में वाद्य वृंद प्रारंभ किया गया और बांसुरी वादक पन्नालाल घोष को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारे भारत के अनेक कलाकारों को आकाशवाणी ने अपने संगीत कार्यक्रमों से जोड़ा है, जिनमें वाद्य और गायन दोनों शामिल हैं। सुगम संगीत भी आकाशवाणी की शान रहा है। वाद्य और गायन के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, अमीर खान, MS सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्ला खान, अनिल विश्वास, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, किशोरी अमोनकर, जसराज, TK मूर्ति, लता मंगेशकर, मन्ना डे, S बालामुरली कृष्णन, नरेंद्र शर्मा, खय्याम, मोहम्मद रफ़ी जैसे नामचीन कलाकारों ने आकाशवाणी को अपना घर मानते हुए रचनाओं की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही लोक संगीत के प्रसारण में नामचीन कलाकारों ने आकाशवाणी के लिए गायन और संगीत को महत्ता प्रदान की है। भूपेन हजारिका, पंडित शिव कुमार शर्मा, T मुक्ता इसी क्षेत्र के प्रमुख नाम हैं। समूह गान भी आकाशवाणी के संगीत विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अनेक भजन, प्रार्थनाएं, विभिन्न त्योहारों आदि से संबंधित समूह गान प्रसारित किए जाते हैं। भारत

की अधिकांश आबादी आज भी गांवों में रहती है और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इसी को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने कार्यक्रम तैयार किए। चौपाल ग्राम्य जगत, गूंजे गांव गंवार, कृषि जगत, करसारी बात, देहाती रेडियो गोष्ठी, खेती गृहस्थी, आओ गांव चले, किसान वाणी आदि कार्यक्रम गांवों, छोटे कस्बों और ढाणियों में रहने वाले निवासियों और कृषकों के लिए बनाए गए और विभिन्न स्थानों के लिए उनकी लोक भाषाओं में प्रसारित किए गए। इन कार्यक्रमों में गांवों के विकास यथा कुएं, नहर, विद्यालय, शिशु पालन केंद्र, अस्पताल, सड़क, तालाब, सामुदायिक भवन आदि के बारे में बातचीत की जाती है और उनका मार्गदर्शन करने के लिए विशेषज्ञों, अभियंताओं और नियंत्रण करने वाली इकाइयों के उच्चाधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र की उन्नति हेतु भी किसानों को पैदावार बढ़ाने और आधुनिक कृषि यंत्रों को इस्तेमाल करने संबंधी जानकारी इन कार्यक्रमों में उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही फसलों को बीमारी से बचाने और हवा, धूप, पानी के सही मिश्रण, आवारा पशुओं और पक्षियों से बचाव और फसल काटने के आधुनिक तरीकों और उसके बाद उनके भंडारण आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने आदि से संबंधित सुझाव के लिए भी आकाशवाणी अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को आमंत्रित करती है। इसी तरह फसलों के क्रय विक्रय और विपणन, कम ब्याज पर ऋण, सरकारी अनुदान, फसलों का सही मूल्य, दलालों से सावधानी और साथ ही फसलों के बीमाकरण की जानकारी भी इन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रसारित की जाती है। ग्रामवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, पानी बिजली के उचित प्रबंधन और बचे हुए समय के सदुपयोग के साथ ही उनके लिए रूपक और लोकगीतों का भी प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी देश की आधी आबादी के प्रति भी जागरूक रहा है। प्रत्येक आकाशवाणी केंद्र महिलाओं के लिए भी महिला जगत, बहनों के लिए सखी सहेली, आधा आकाश हमारा जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसमें महिलाएं अपने घर परिवार के लिए सभ्यता और संस्कृति और वार त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। महिलाओं को विभिन्न रोगों की दशा और लक्षण और साथ ही उन्हें दूर किए जाने वाली चिकित्सा के बारे में भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य संबंधी विशेष जानकारी भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों के लालन पालन, उनके अच्छी बुरी आदतों और उन्हें घर पर ही शिक्षित करने संबंधी जानकारी विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों से भेंट वार्ताओं का प्रसारण किया जाता है। इसके साथ ही घरों में भिन्न कार्यों जैसे कपड़ा सिलाई, बुनाई, पेंटिंग, कुटीर उद्योग और साथ ही पापड़ अचार, मसाले आदि के बारे में भी उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों को अपने घर की रसोई में ही बनाने की विधि भी महिलाओं को उनके कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती है। इसी तरह बच्चों के लिए भी आकाशवाणी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, जैसे बाल सभा, नन्ही दुनिया, बच्चों के लिए मुकुल आदि। इन कार्यक्रमों में बच्चों के लिए अव्वल दर्जे के मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ साथ उन्हें कहानियों, कविताओं, रूपकों और वार्ता के माध्यम से प्रेरणा और साहस, ज्ञान प्रदान किया जाता है। उन्हें देश के वीर सैनिकों और विभिन्न महापुरुषों की जीवनी भी रूपकों के रूप में सुनाई जाती है। स्कूली शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रसारण कार्यक्रम एक नायाब कार्यक्रम रहा है, जिसमें छठी और ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी प्रकार युवाओं को भी आकाशवाणी ने ध्यान में रखा, जिसमें युवाओं को विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने और उनमें भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 21 जुलाई 1969 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कुछ वर्षों पश्चात इस कार्यक्रम की लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुँच गई और इसे विभिन्न केंद्रों को स्थानीय स्तर पर भी ये कार्यक्रम निर्माण और प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया। इसका लाभ ये हुआ कि 15 वर्ष से ऊपर और 30 वर्ष की उम्र से कम वाले युवा सीधे रेडियो से जुड़ गए और उन्हीं के सुझावों और रुचि को ध्यान में रखते हुए युववाणी में विभिन्न कार्यक्रम शामिल किए जाने लगे। आकाशवाणी के इस आलेख में यदि खेलों की बात नहीं की जाए तो ये आलेख अधूरा ही रह जाएगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी और अन्य खेलों से संबंधित पल पल की जानकारी आकाशवाणी बहुत ही रोचक अंदाज में खेल प्रेमियों को पहुंचाता है। मैदान के बाहर भी
और मैदान के भीतर

0: सीधा प्रसारण करके। जसदेव सिंह एक ऐसा नाम है जिनके द्वारा हॉकी का आंखों देखा हाल घर घर में, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में भी सुना जाता रहा है। इनके साथ ही आप सुशील दोषी को भी नहीं भूल सकते, जो क्रिकेट जगत को आपके रेडियो सेट पर बरसों तक प्रस्तुत करते रहे। आकाशवाणी के अनेक चैनल विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रीय चैनल, भाषा भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड, रागम और विविध भारती आदि के अपने उद्देश्य हैं। इनके अतिरिक्त बाह्य सेवा विभाग द्वारा प्रस्तुत बलूची, पश्तो, सिंहली और पंजाबी भाषा के कार्यक्रम विदेशों में भी सुने जा सकते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मन की बात से भी भारतीय जनता एक बार फिर से रेडियो में रुचि लेने लगी है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी प्रसारित किया जाता है और विभिन्न चैनलों से भी प्रसारित किया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस उपयोगी कार्यक्रम से जुड़कर अपने विचार भी व्यक्त कर सके। इस प्रकार अपने 90 वर्ष की यात्रा में आकाशवाणी ने अपने सामाजिक सरोकारों को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया है और समाज के हर क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। यही कारण है कि आकाशवाणी को हम आवाज़ की दुनिया का एक सच्चा दोस्त और पल पल नई राह दिखाने वाला बेहतरीन साथी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: सौरभ में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, आवाज की दुनिया का बेहतरीन साथी है आकाशवाणी। वार्ताकार थे श्री मुकेश पोपली।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए
5: आकाशवाणी की कार्य, आपकी आवाज जन जन तक।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के हमारे आज के कलाकार हैं अभिजीत। तो आइए सुनते हैं इनके गाए कुछ गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिजीत के गाए कुछ गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: नमस्कार,
0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से आमिर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के संचालन के लिए प्रदेश भर में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश में सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम हैं। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 जगहों पर होंगे।
2: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या

0: दोगुनी हुई है,
1: यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल पारदर्शी पानी की बोतल और प्रवेश पत्र रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ही ले जा सकते हैं। कलावा, पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक और पूरी बाजू के कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को सघन जाँच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारी आभूषण और धातु की वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पेपर लीक जैसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने प्रदेश भर में विशेष टीमें तैनात की हैं। ये टीमें कोटा, सीकर और जयपुर जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, PG और सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। पांचना बांध से सिंचाई जल के गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर आज भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक संयुक्त बैठक रखी गई है। बैठक में सभी पक्षों से चर्चा कर विवाद का हल निकालने और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर सहित सवाई माधोपुर के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहरों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से रखी। गौरतलब है कि करौली के किसान प्रतिनिधि महापंचायत में व्यस्त होने के कारण कल की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए आज फिर से बैठक रखी गई है। प्रदेश के लूनी बांध का नाम अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा जाएगा। जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ब्यावर के आशापुरा माता धाम में आयोजित एक समारोह में ये घोषणा की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इतिहास में वीरों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाना समय की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है और हीट वेव से पूरी तरह राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के वायुमंडल में बने नए सिस्टम से हवाओं की नमी में तेजी से बदलाव आया है। इससे आज राज्य के सभी संभागों में बारिश के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। इस बीच कल दोपहर बाद चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में मौसम अचानक बदला और तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओले भी गिरे। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी कल ही अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर पहुंच जाएंगे। इस बीच योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। जगह जगह योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर योगा चैंपियंस के साथ योग किया। इधर हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आज शहर के विश्व प्रिय शांति पार्क में सामूहिक योगाभ्यास किया गया।
3: शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग

0: प्रेक्षकों ने उपस्थित जनों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन एवं श्वासासन जैसी महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव दूर होता है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के पारदर्शी संचालन के लिए कोचिंग शहरों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश के सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत की हमारी आज की कलाकार हैं सरिता गोस्वामी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरिता गोस्वामी का गाया ये लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। सवेरे के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विदेशी माध्यम का अभिशाप विषय पर बापू के विचार। वाचक स्वर श्री राम साहे हर्ष का, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की और संयोजन श्री अमित सिंह का है।

नमस्कार। गांधी चर्चा के आज के इस अंक में विदेशी माध्यम का अभिशाप विषय पर बापू के विचार। बापू कहते हैं, जो चीज लोगों को बुरी लगती है वो है पाश्चात्य संस्कृति की वेदी पर भारतीय या प्राच्य संस्कृति का बलिदान कर दिया जाना। यदि ये सिद्ध भी किया जा सकता हो कि पाश्चात्य संस्कृति प्राच्य संस्कृति से श्रेष्ठ है, तो ये बात संपूर्ण भारत के लिए घातक सिद्ध होगी कि उसके अत्यंत प्रतिभा संपन्न पुत्रों और पुत्रियों का लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति के वातावरण में हो और इस प्रकार वे अपने राष्ट्रीय गुणों को खोकर सामान्य जनता से कटकर अलग हो जाएं। गांधी जी कहते हैं, मेरे विचार से जिन लोगों की चर्चा की गई है उनका सामान्य जनता पर जो भी अच्छा प्रभाव पड़ा वो उसी हद तक पड़ा जिस हद तक उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत प्रभाव के बावजूद अपने व्यक्तित्व में प्राच्य संस्कृति के गुणों को बचा रखा था। इस संबंध में मैं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को विपरीत उस अर्थ में मानता हूं जिस अर्थ में उसने उस पूरे प्रभाव को प्रकट नहीं होने दिया जो प्राच्य संस्कृति के सबसे अच्छे गुण प्रकट कर सकते थे। और जहां तक खुद मेरी बात है, मैंने पाश्चात्य संस्कृति के ऋण को बहुत साफ साफ स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही मैं कह सकता हूं कि मैं राष्ट्र की जो भी सेवा कर पाया हूं वो पूर्णतः इसी कारण से कि जहां तक संभव हुआ है मैंने अपने व्यक्तित्व में प्राच्य संस्कृति के गुणों को कायम रखा है। अंग्रेजियत के रंग में रंगे अपने राष्ट्र धर्म से च्युत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जन साधारण के विषय में कुछ न जानता हो, जिसे उसकी चिंता तो और भी न हो और जो शायद उसके तौर तरीकों विचारों और आकांक्षाओं से घृणा करता हो, मैं जन साधारण के लिए बिल्कुल बेकार होता। जिस राष्ट्र के बच्चों पर एक ऐसी संस्कृति के प्रहारों से अपने को बचाने का

काम आ पड़े जो अपने आप में लाख अच्छी होती हुई भी उस अवस्था में उसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, जबकि उन्होंने खुद अपनी संस्कृति को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया हो और वे उसकी गहराइयों में न उतर पाए हो, और उस राष्ट्र की कितनी शक्ति व्यर्थ नष्ट होगी इसका अनुमान लगा पाना कठिन है। बापू कहते हैं, अब जरा प्रश्न पर समग्र रूप से विचार कीजिए। यदि चैतन्य, नानक, कबीर, तुलसीदास और हमारे देश में जो अन्य बहुत से संत सुधारक हो गए हैं, वे बचपन से ही किसी अत्यंत सुसंचालित अंग्रेजी स्कूल से संबद्ध होते, तो क्या उन्होंने जितना अच्छा काम किया उससे ज्यादा अच्छा काम वे कर पाते? लेखक ने जिन लोगों की चर्चा की है, उन्होंने क्या इस महान सुधारकों से ज्यादा अच्छा काम कर दिखाया है? यदि दयानंद ने किसी भारतीय विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त कर ली होती, तो क्या वे और भी बड़ा काम कर दिखाते? चैन और ऐशो इशरत की जिंदगी जीने वाले अंग्रेजी भाषी राजाओं महाराजाओं के बीच, जिनका लालन पालन शैशव काल से ही पाश्चात्य संस्कृति के वातावरण में हुआ है, क्या कोई ऐसा है जिसका नाम शिवाजी के साथ लिया जा सकता हो? तमाम मुसीबतों को बहादुरी से झेलने और अपने दिलेर और हट्टे कट्टे सैनिकों की तरह सादा जीवन जीने वाले शिवाजी के साथ क्या वे साहसी शूर प्रताप से अधिक अच्छे शासक हैं? क्या यही लोग पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे नमूने हैं? ये नीरो लोग जो खुद तो लंदन और पेरिस में बैठकर चैन की बंसी बजा रहे हैं और उधर उनके रोम में आग लगी हुई है, उनके राज्य दुख दर्द में डूबे हुए हैं, उनकी संस्कृति में उनके लिए गर्व करने की कोई बात नहीं है, उस संस्कृति ने उन्हें अपने ही देश में अजनबी बना दिया है, उनकी संस्कृति में उनके लिए गर्व करने की कोई बात नहीं है, उनके राज्य दुख दर्द में डूबे हुए हैं, उनकी संस्कृति में उनके लिए गर्व करने की कोई बात नहीं है, उस संस्कृति ने उन्हें अपने ही देश में अजनबी बना दिया है, उसने उन्हें यह सिखाया है कि जिन लोगों पर शासन करने का काम उन्हें एक उच्चतर शक्ति द्वारा सौंपा गया है, उन लोगों के सुख दुख के सहभागी बनने के बजाय अपनी प्रजा की गाढ़े पसीने की कमाई और अपनी आत्मा को यूरोप में जाकर गंवाओ। लेकिन यहां विचारणीय प्रश्न यूरोपीय संस्कृति नहीं है। बापू कहते हैं, प्रश्न तो शिक्षा के विदेशी माध्यम का है। यदि हम इस तथ्य को एक तरफ रख दें कि एकमात्र उच्चतर शिक्षा, जिसे शिक्षा कहा जा सकता है, हमने अंग्रेजी माध्यम से पाई है, तो फिर इस स्वयं सिद्ध बात को सिद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी कि यदि किसी राष्ट्र के नौजवानों को सचमुच एक राष्ट्र के रूप में रहना है, तो उन्हें सारी शिक्षा, उच्चतम शिक्षा भी अपनी देशी भाषाओं के माध्यम से ही प्राप्त करनी चाहिए। निश्चय ही इस बात को समझाने और साबित करने की जरूरत नहीं है कि किसी भी राष्ट्र के नौजवान तब तक जन साधारण से अपना संपर्क बनाए नहीं रख सकते या बना नहीं सकते जब तक कि वे उसी भाषा में ज्ञान प्राप्त कर और ग्रहण न करें जिस भाषा को जनता समझती है। यहाँ के हजारों नौजवानों को अपनी मातृभाषा और अपने साहित्य की उपेक्षा करके एक ऐसी भाषा और उसके मुहावरों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस भाषा को अपने दैनिक जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं है, जो वर्षों का समय बर्बाद करना पड़ता है, उससे राष्ट्र की कितनी अपार क्षति होती होगी इसका अनुमान कौन लगा सकता है? बापू कहते हैं, अमुक भाषा विकास सक्षम या जटिल अथवा वैज्ञानिक विचार को व्यक्त करने योग्य नहीं है, इससे बड़े अंधविश्वास के बारे में तो कभी सुना ही नहीं। कोई भी भाषा उस भाषा को बोलने वालों के चरित्र और विकास का बिल्कुल सही प्रतिबिंब होती है। देश के नौजवानों पर एक विदेशी माध्यम थोप देने से

उनकी प्रतिभा कुंठित हो रही है और इतिहास में इसे विदेशी शासन की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई माना जाएगा। इसने राष्ट्र की शक्ति में घुन लगा दिया है। शिक्षार्थियों के लिए विद्योपार्जन के लिए पर्याप्त समय नहीं छोड़ा, उन्हें सर्वसाधारण से काटकर अलग कर दिया है। शिक्षा को अनावश्यक रूप से व्यय साध्य बना दिया है। यदि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रही तो ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि ये राष्ट्र की आत्मा का हनन कर देगी। इसलिए शिक्षित भारतीय अपने आप को विदेशी माध्यम के इस व्यामोह से जितनी जल्दी मुक्त कर लेंगे, स्वयं उनके और देश की जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा। विदेशी माध्यम का अभिशाप विषय पर अभी आप बापू के विचार सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए एक भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, विदेशी माध्यम का अभिशाप विषय पर अभी आप सुन रहे थे बापू के विचार। वाचक श्रोता श्री राम सहाय हर्ष का और प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की और संयोजन था श्री अमित सिंह का। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। समय मिलाना चाहें तो स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के ठीक 9:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है
2: जी।
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम

0: बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सबका। श्रोताओं, एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
0: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
1: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
0: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे

0: बाद में पता चला
1: और अब
0: कि
1: इसी कार्यक्रम के साथ
0: लिलिपुट द्वीप है।
1: आज का हमारा
0: जब मेरी नींद खुली
1: होता है तो अपने मित्र
0: तो मैंने अपने
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
2: थोड़ा सा फंबल था
0: कि कोई चीज
2: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
0: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राजदरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस

के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही

किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से

मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया।

0: कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
3: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीत। लीजिए कार्यक्रम में सुनिए श्रेया घोषाल, तुराज और अजीम सिराजी की आवाज में फिल्म जैकपॉट का ये गीत। गीत को संगीत दिया है शारिब तोशी ने। तो आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म जैकपॉट का ये गीत।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: कार्यक्रम में आप सुनिए अरिजीत सिंह, नीति मोहन, आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा की आवाजों में फिल्म मेरी प्यारे बिंदु का ये गीत। गीत को लिखा है वायु ने और संगीत सचिन जिगर का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। दीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म अंकुर अरोड़ा मर्डर केस का ये गीत। गीत को लिखा है जुनैद वासी ने और संगीत चिंतन भट्ट का। तो आइए सुनते हैं अंकुर अरोड़ा मर्डर केस फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए अरमान मलिक की आवाज में फिल्म अजहर का ये गीत। गीत को लिखा है रश्मि विराग ने, संगीत अमाल मलिक का।

श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत नदीम शर्वन का था। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एक विलेन का ये गीत।

0: इस कार्यक्रम एपिसोड नंबर 18
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
3: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़ एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
2: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में पीएम डिवाइन, तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
3: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स, और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
2: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
3: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा

फिल्म आशिकी 2 से अरिजीत सिंह और पलक मुचाल के स्वर में अभी आपने ये सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं। सुनते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष

0: इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। दो प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे

0: और विकास को तेजी मिल रही है।
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहाँ पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
0: So, Purvottar Kshetra Vikas Mantralay ka आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड व्हेन दे डू दैट दे आल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
0: थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
4: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कम्प्लीटिंग 12 ईयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 ईयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी। We have seen challenges like COVID. We have seen challenges.

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 11:35 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

सावन को आने दो, यशुदास के स्वर में। अभी आपने ये सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हैं महेंद्र कपूर के।

फिल्म किस्मत से महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: फिल्म बाबू से लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने ये सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से बोल रहे हैं, 12 बजने को हैं। सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है।

0: भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से उड़ीसा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपये की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामरु चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 होने को हैं। सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शाम 5:10 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित रोजगार मेला।

रात 10 बजे आप सुन पाएंगे जयपुर केंद्र से उर्दू कार्यक्रम गुलिस्ता। रात 10:30 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत जसकरण गोस्वामी का सितार पर राग पूरिया कल्याण। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे।

सात बजे ग्रामीण मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज की प्रस्तुति देंगे रामस्वरूप विष्णु और अश्विनी व्यास। 7:45 पर आप सुन पाएंगे स्टूडियो से सुगम संगीत, 8 बजे फिल्म संगीत और 8:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज एट 9।

शाम 6 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर फिल्म संगीत। 6:30 पर जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जयपुर केंद्र से ही आप सुन पाएंगे जिले की चिट्ठी। और 6:45 पर जयपुर केंद्र से आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

दोपहर 1:05 पर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति देंगे माधवी व्यास और डॉक्टर शर्मिला। 2:00 मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार।

दोपहर 1 बजे आप सुन पाएंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 12:40 पर आप स्टूडियो से सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 हो चुके हैं। सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनते हैं पंकज उदास द्वारा गाई गजलें।
1: जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल,

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं पंकज उदास द्वारा गाई गजलें।

इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:40 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म घर से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू जन से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बज चुके हैं। सुनते हैं जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 63 लाख से अधिक लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़ चुके हैं, जिनमें करीब 30% महिलाएं शामिल हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत पहली बार सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस अवसर पर देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राज्य में जयपुर सहित 7 स्थानों पर इन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आमजन से स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। गौरतलब है कि अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार दर्शन करते हुए भारत के लिए कुल 10 पदक जीते हैं। इन पदकों में 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को बीकानेर और जयपुर प्रवास पर रहेंगे। श्री वैष्णव रविवार सुबह बीकानेर पहुंचेंगे, जहां वे करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे बीकानेर के लालगढ़ से गुजरात के साबरमती के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचेंगे, वे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मेगा कोचिंग टर्मिनल उद्घाटन करेंगे तथा राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को भी रवाना करेंगे। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा होर्मूज जलडमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ये कतर से रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आए हैं। ये पोत आज सवेरे दाहेज एलएनजी टर्मिनल पर पहुंचा। ये कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक दबाव के बीच देश भर में एलएनजी की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। सरहदी जिले जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों का सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी राजस्व गांवों और ग्राम पंचायतों में ये विशेष सर्वे कराया जाएगा।
1: जितने भी 0 से 50 किलोमीटर की रेंज के रेवेन्यू विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पर एक सर्वे होना है, जिसमें एंक्रोचमेंट की दृष्टि से यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसका फंडिंग कहाँ से आया है, एंक्रोचमेंट है तो किस तरीके का एंक्रोचमेंट है, आबादी की क्या स्थिति है, खेती की क्या स्थिति है, वहाँ हमारे कितने पशुपालक हैं, क्या हमारी कैटल कौन सी वहाँ पर ज्यादा आबाद है, तो इस तरीके का एक जनरल सर्वे है जिसमें मुख्य हमारा ध्यान रहेगा एंक्रोचमेंट की स्थिति पर।
0: 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर कल शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को सभी तैयारियां तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस है। इसका आयोजन केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार संयुक्त रूप से कर रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आरंभ होता है महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति दे रही हैं माधवी व्यास और डॉक्टर शर्मिला।

0: कहा जाता है बारिश सिर्फ आसमान से नहीं बरसती, कभी कभी अपनों के शब्द भी मन पर ऐसी फुहार बनकर गिरते हैं जो पूरे दिन की थकान पल भर में धो देता है।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए आज कुछ ऐसे ही शब्दों की फुहार लेकर हम आपके आंगन तक पहुँचे हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम महिला जगत। मैं हूँ माधवी व्यास और मेरे साथ है मेरी ही सखी
1: डॉक्टर शर्मिला।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: सखियों, बारिश की हल्की हल्की फुहारों ने मौसम को तो सुहाना बना ही दिया है, लेकिन यही मौसम कुछ नई चुनौतियां भी हमारे लिए लेकर आता है, क्योंकि ऐसे मौसम में स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव भी कई बार पड़ता है, क्योंकि आसपास मच्छर हो जाते हैं, बहुत सारी मक्खियाँ हो जाती हैं, और जो हम बाहर खाते हैं वो भी सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं होता। क्यों?
0: बिल्कुल सखियों, एक महिला सिर्फ अपने घर की धुरी नहीं होती है, वो पूरे समाज की शक्ति होती है। जब वो स्वस्थ होती है, जागरूक होती है और आत्मरक्षा के प्रति सहज होती है, तब पूरा परिवार सुरक्षित और सशक्त बनता है,
1: और
0: है ना?
1: माधवी, हम आज अपनी बहनों को इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण की बात भी करेंगे, और साथ ही जानेंगे मानसून में होने वाले मौसमी बीमारियों से बचने के दादी नानी के सरल और असरदार नुस्खे, क्योंकि हमारी बहनों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नुस्खे बड़े काम आते हैं। क्यों? और बेटियों के लिए ज़रूरी है बेसिक से, मतलब डिफेंस कैसे वो बचाएं अपने आप को, क्योंकि आज का जो माहौल हो गया है ना वो बड़ा अजीबोगरीब है। क्यों?
0: बिल्कुल। और इसी के साथ ही कार्यक्रम में होगी रसोई और ब्यूटी से जुड़ी कुछ आसान और उपयोगी टिप्स, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और भी सहज बनाएगी, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और आइए बारिश की इन बूंदों के साथ ज्ञान, जागरूक और प्रेरणा की एक सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि महिला जगत में हर बातें आपके जीवन से जुड़ी होती हैं, आपके सपनों से जुड़ी होती हैं और आपके आत्मविश्वास से भी जुड़ी होती हैं। तो जीवन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए छोटी सी कोशिश, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: तो आइए बातचीत के इस खूबसूरत सिलसिले को यहीं थोड़ा सा विराम देते हैं और कदम बढ़ाते हैं सुरों की उस दुनिया की ओर, जहां हर धुन दिल की भाषा बन जाती है और हर गीत अपनेपन का एहसास कराता है।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: उम्मीद है ये मधुर गीत आपके मन को सुकून देकर गया होगा। सखियों, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर चुप्पी नहीं, खुलकर संवाद होना ज़रूरी है, क्योंकि जब समाज जागरूक होता है तभी बदलाव की शुरुआत होती है ना शर्मिला?
1: बिल्कुल माधवी, आज का हमारा पहला विषय है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल का निर्माण। यह केवल एक दिवस नहीं बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो हमें याद दिलाता है कि हर महिला और हर बेटी को भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार हमें उन्हें देना चाहिए।
0: यौन हिंसा केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है बल्कि पूरे समाज की संवेदनाओं पर आघात है। इसकी रोकथाम केवल कानून से नहीं होगी,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि हमारी सोच, हमारे संस्कार और आपसी सम्मान से भी संभव है। परिवार में बेटे हो चाहे बेटियां हों, समान संस्कार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: बिल्कुल माधवी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हम कई बार ऐसा होता है कि बेटों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, है ना, कि हाँ तुम तो कुछ भी कर सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, जैसा कुछ है ऐसा माहौल हम देखते हैं कि तुम तो बेटी हो। बेटी को तो अक्सर हम टोक देते हैं बात बात पे, लेकिन बेटों को टोकने वाला शायद रिवाज कम है। मेरे हिसाब से उनको भी होना चाहिए, है ना, ताकि वो
0: वहीं
1: भी
0: से ही शुरुआत होती
1: हाँ
0: है,
1: शुरुआत होती है घर से ही, तो शुरुआत बच्चा सीखता है कि हाँ नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो
0: और कहते हैं कि महिलाओं की जो बातें होती हैं उनको भी गंभीरता से सुननी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कई बार क्या होता है घर के माहौल में सिर्फ पुरुष पर्सन ही जो होते हैं उनकी बातें सुनी जाती है और महिलाओं की बातों को गंभीरता से नहीं ली जाती है। तो बस इस तरह की जो बातें हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठानी हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
1: बिल्कुल।
0: है ना?
1: और यदि हाँ समाज के अंदर हम कहीं भी महिला या बच्ची के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा या किसी भी तरह का कोई उत्पीड़न अगर हम देखें तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है ये। हमें आगे बढ़ करके उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे परिवार हो, समाज हो, प्रशासन हो, तीनों को साथ मिलकर के काम करना है। न्याय उनका उनको दिलाना है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। याद रखिए न्याय जो होगा अगर हम अन्याय सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना जैसा ही है।
0: एक सुरक्षित समाज वही है जहाँ पर महिलाएं बिना डर के अपने सपनों को उड़ान दे सकें। आइए हम सब भी संकल्प करते हैं कि अपने घर, अपने कार्यस्थल और अपने आसपास ऐसे वातावरण बनाएं जहाँ सम्मान, संवेदनशील और सुरक्षा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए, है ना?
1: और अब समय है एक ऐसे गीत का जो उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर हौसला भर दे, सकारात्मक सोच भर दे, एक ऐसी मधुर धुन सुना दें। तो माधवी सुनवाते हैं अपनी सखियों को एक प्यार की मधुर धुन जिस पर उनका नाचने का मन हो जाए और साथ में हम भी उनके नाचने लगें।
0: बिल्कुल।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: सखियों, आज का दौर डिजिटल दुनिया का दौर है। मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन ने ज्ञान, मनोरंजन और संवाद के नए द्वार तो खोले ही हैं, लेकिन इसके साथ कई नए सवाल भी हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है, सोशल मीडिया का हमारे बच्चों के मन और व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए प्रस्तुत है एक विचारोजतक वार्ता, बाल मन पर सोशल मीडिया का प्रभाव। इस वार्ता की वार्ताकार हैं श्रीमती सरोज राठौर, प्रस्तुति हैं श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजक हैं श्री अमित सिंह का।
1: में प्रत्येक व्यक्ति तकनीक से प्रभावित हो रहा है, भाव एवं विचार दोयम दर्जे पर पहुंचते जा रहे हैं। वास्तविक सामाजिक संसार सिमटता जा रहा है, जिसकी जगह एक आभासी समाज सोशल मीडिया के रूप में स्थान लेता जा रहा है, जिसका प्रभाव प्रत्येक उम्र के व्यक्ति पर पड़ रहा है और बाल मन भी इससे पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज इसी महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय बाल मन पर सोशल मीडिया का प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। आज सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ज्ञान, मनोरंजन और संवाद हेतु इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बाल मन पर पड़ते हैं। यदि सकारात्मक पक्ष की बात करें तो सोशल मीडिया बच्चों को ज्ञान और सीखने के अवसरों का विस्तार करता है। आज अनेक शैक्षणिक वीडियो, ऑनलाइन कक्षाएं, सामान्य जानकारी बच्चों को घर बैठे उपलब्ध हो जाती है। इससे उनकी रचनात्मक जिज्ञासा और नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ती है। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर बच्चे अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना सकते हैं। सोशल मीडिया बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का भी अवसर देता है। अनेक बच्चे गायन, नृत्य, चित्रकला, लेखन और विज्ञान संबंधी

गतिविधियों के वीडियो साझा करके अपनी पहचान बना रहे हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी रुचियों को विकसित करने का अवसर मिलता है। हालांकि सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इसके अत्यधिक उपयोग से बच्चों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। वे घंटों मोबाइल पर समय व्यतीत करते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता और शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा अनुचित सामग्री, गलत जानकारी भी बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और जिम्मेदारी पूर्वक करें। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि वे सोशल मीडिया का उपयोग केवल ज्ञान, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों के लिए करें। उचित उपयोग से सोशल मीडिया बच्चों के विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने लगातार प्रगति करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है। यह केवल बड़ों तक ही सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल रही है। इसके अत्यधिक उपयोग से बच्चों की शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण मोटापा, तनाव और नींद की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री हमेशा बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती। कई बार वे हिंसा, अश्लीलता और भ्रामक सूचनाओं के संपर्क में आ जाते हैं, जो उनके मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकती है। कम उम्र में ऐसी सामग्री देखने से उनके व्यवहार व सोच में नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति भी बच्चों में बढ़ती जा रही है। वे दूसरों की उपलब्धियों, जीवन शैली और लोकप्रियता देखकर स्वयं को कमतर महसूस कर रहे हैं। इससे आत्मसम्मान में कमी, तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न भी गंभीर समस्याएं बनकर उभर रही हैं। कई बच्चे सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों या अन्य व्यक्तियों का सामना करते हैं, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार बच्चे अपनी समस्याएं किसी से साझा नहीं कर पाते, जिससे उनमें तनाव और बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों और शिक्षकों की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों को सोशल मीडिया के सुरक्षित और संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार पर उचित निगरानी रखें, उनके साथ खुला संवाद बनाए रखें। बच्चों को यह समझाना भी जरूरी है कि सोशल मीडिया वास्तविक जीवन का पूर्ण चित्र नहीं है। विद्यालयों में भी डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना सीख सकें। साथ ही उन्हें खेलकूद, पाठन कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हाल ही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में एक बड़ा अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि जब बच्चों की दिनचर्या में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ जाता है, तो वे ज्यादा चिड़चिड़े और उदास रहने लगते हैं। और कई बार बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए माता पिता बच्चों का पूरा दिन विभिन्न क्लासेस में भर देते हैं, जैसे स्विमिंग, डांसिंग, रोबोटिक्स, स्पोकन क्लासेस, अबेकस आदि। लेकिन इन सब स्थानों पर बच्चों के विकास को लेकर सवाल बना रहता है कि वास्तव में वे सीख रहे हैं या सिर्फ व्यस्त बनने ही सीख रहे हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट व चाइल्ड बिहेवियर एक्सपर्ट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को केवल प्रोडक्टिव बनाना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें भावनात्मक रूप से सुरक्षित और मानसिक रूप से संतुलित बनाना उससे कहीं अधिक आवश्यक है, ताकि वह जीवन जीना सीख सके। सोशल मीडिया ने बच्चों का दिमाग मशीन की तरह बना दिया है, जिससे हर समय इनपुट तो दिया जा रहा है, लेकिन खाली समय उन्हें नहीं मिलता। वही समय जहां वे बोर हों, खुद से खेल पाए, बिना किसी लक्ष्य के चित्र बनाएं, घर में इधर उधर घूमें, दादी नानी की बातें सुनें या चुप रहें। मनोविज्ञान में इसे अनस्ट्रक्चर्ड प्ले कहा जाता है, जो बच्चों में रचनात्मकता, भावनात्मकता, समझ, समस्या समाधान की क्षमता और सेल्फ अवेयरनेस विकसित करने का जरिया है। आज सोशल मीडिया ने बच्चों से वह स्पेस छीनना शुरू कर दिया है। यदि बच्चों को हेल्दी एंगेजमेंट नहीं मिलेगा, तो वे स्वाभाविक रूप से स्क्रीन की ओर आकर्षित

0: नहीं रहे, क्योंकि स्क्रीन तुरंत स्टिमुलेशन यानी उन्हें उत्तेजना देती है। अभिभावक बालक के संबंध में इस तरह के कुछ संतुलन अगर बनाते हैं तो परिणाम कुछ और हो सकते हैं, जैसे कुछ भी मीनिंगफुल एक्टिविटीज हो, थोड़ा फिजिकल प्ले हो, थोड़ा फैमिली टाइम हो, थोड़ी जिम्मेदारी और पर्याप्त फ्री टाइम होना भी आवश्यक है। यह संतुलन बच्चों को मानसिक रूप से काफी स्वस्थ बनाए रखता है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से फिजिकली नजदीक तो होते हैं लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वे अपनी अपनी स्क्रीन डिवाइसेस में व्यस्त रहते हैं, जबकि बच्चों को एक्सपेंसिव ऑनलाइन या स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि माँ के साथ समय बिताना, पिता के साथ खेलना, रात में छत पर बैठकर बातें करना, पौधे लगाना, कजिन्स के साथ रूठना मनाना या परिवार के साथ बिना किसी जल्दबाजी के समय बिताना ज्यादा पसंद होता है, और ऐसा करने से वे सोशल मीडिया के उपयोग से भी बच सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया अपने आप में न तो पूरी तरह से अच्छा है और न ही पूरी तरह बुरा है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। यदि सही मार्गदर्शन और संतुलन के साथ सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो ये बच्चों के विकास और सीखने का प्रभावी साधन बन सकता है। वहीं यदि इसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग किया जाए तो यह व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, जो कि हम आचारों और देख रहे हैं। शोध के अनुसार सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को प्रभावित करता है तथा वास्तविक सामाजिक संबंधों को कमजोर करता है। एक आभासी संसार में बच्चे जी रहे हैं। आत्मविश्वास और असामाजिक व्यवहार में वृद्धि हो सकती है, इसलिए सोशल मीडिया का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया के लाभों से परिचित कराएं और साथ ही उन्हें इसके संभावित खतरों से भी सचेत करें, तभी हम एक स्वस्थ, जागरूक और संतुलित पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे। सोशल मीडिया आज डिजिटल तनाव का भी प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपने जीवन के केवल सकारात्मक और आकर्षक पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। इन्हें देखकर बालक अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा उनसे अधिक सफल है, सुंदर है और ज्यादा खुश भी है। यह तुलना हीन भावना, असंतोष और तनाव को जन्म देती है। विशेषकर बालकों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है कि लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या उनके आत्मसम्मान को भी प्रभावित करने लगी है। यदि अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वे निराशा और चिंता का अनुभव करने लगते हैं और हर समय स्क्रीन टटोलते रहते हैं। अनुसंधानों से यह भी पता चला है कि लगातार डिजिटल उपकरणों का प्रयोग चिंता, अवसाद और अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है। विडंबना यह है कि सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का दावा करता है, लेकिन कई बार यह वास्तविक सामाजिक संबंधों को कमजोर कर देता है। अतः डिजिटल संतुलन आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में माता पिता और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चों को तकनीक का सही उपयोग सिखाया जाए। केवल समय निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें खेल, पुस्तकें, रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता के अवसर भी देने चाहिए। आइए हम सभी तकनीक का समझदारी और संतुलन के साथ उपयोग करने का संकल्प लें, ताकि डिजिटल दुनिया की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए बालकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सके।
1: तकार थी श्रीमती सरोज राठौर, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की तथा संयोजन था श्री अमित सिंह का। आशा है इस वार्ता ने हमें यह सोचने की प्रेरणा दी होगी कि तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है जब उसके साथ विवेक, संतुलन और संस्कार भी जुड़े हों। बच्चों को केवल मोबाइल ही नहीं, अपना समय, अपना स्नेह और सही मार्गदर्शन भी दीजिए, क्योंकि मजबूत बचपन ही उज्ज्वल भविष्य की नींव होता है।

0: कहते हैं दवा से पहले जो दुआ काम आ जाए वही तो नानी और दादी की सीख कहलाए।
1: बिल्कुल
0: बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और सुकून तो लाता ही है, लेकिन कभी कभी सर्दी, जुखाम, बुखार और संक्रमण जैसी परेशानियां भी साथ लेकर आता है। ऐसे में दादी नानी की याद आ ही जाती है ना?
1: और माधवी, बचपन में जरा सी छींक आती थी ना तो पता है मेरी दादी क्या कहती थी, अरे इधर आओ जल्दी से, तुलसी के पत्ते तोड़ के आला, थोड़ी सी अदरक डाल के गर्मा गर्म तेरे को चाय पिलाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उस समय शायद ये बातें साधारण लगती थी, लेकिन आज विज्ञान भी मानता है कि कई पारंपरिक घरेलू उपाय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।
0: बरसात के मौसम में सबसे पहले साफ और उबला हुआ पानी पीने की आदत डालें। बाहर का कटा हुआ फल या खुला भोजन खाने से बचें। घर में अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग हों तो उनकी देखभाल थोड़ी विशेष रूप से करें, है ना?
1: हाँ, और हाँ, दादी की एक सीख कभी मत भूलिए, भीगने के बाद देर तक गीले कपड़ों में ना रहें, हल्दी वाला दूध या काढ़ा पी सकते हैं, तुलसी, काली मिर्च और मौसमी फलों का भी संतुलित सेवन करके हम अपने शरीर को मजबूत, मतलब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट बना सकते हैं इनको।
0: बिल्कुल
1: और यदि तेज बुखार हो या कोई गंभीर परेशानी हो तो घरेलू नुस्खे तो करो ही करो,
0: करो
1: लेकिन
0: ना।
1: अगर लगे कि उनसे हमारा

0: रोग जो है वो ठीक नहीं हो रहा है तो हमें डॉक्टर की सलाह भी ले लेनी चाहिए।
1: सच्ची तो है, पुराने घरों की बातें कभी पुरानी नहीं होती हैं। दादी नानी की सीख यूं ही जुबानी नहीं होती है। आधुनिक जीवन में भी यदि हम उनकी कुछ अच्छी आदतों को अपना लें तो कई बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। क्यों
0: बिल्कुल,
1: शर्मिला?
0: क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी होती थी जो हमारी रसोई में ही बहुत सारी बीमारियों का तो इलाज छिपा होता था,
1: छिपा
0: है ना?
1: होता था, नहीं आज भी है।
0: मतलब पहले हम ज़्यादा करते थे,
1: हाँ
0: उपयोग में ज़्यादा लाते थे उन चीज़ों को, आजकल हम शायद भूलते जा रहे हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: और बीमारियों को न्योता ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि बाहर का फास्ट फूड बच्चों ने खाना सीख लिया है, हमेशा वो घर के खाने से बोर हो जाते हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो बहनों, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी रखें और विशेषकर अपने बच्चों और बुज़ुर्गों का। तो ये स्नेह भरी बातें हम आपके साथ करते ही रहेंगे, लेकिन ले चलते हैं आपको संगीत की उसी प्यारी सी दुनिया में।

0: सखियों, आज के समय में बेटियों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि बेसिक सेल्फ डिफेंस भी हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मरक्षा का मतलब लड़ाई करना नहीं है बल्कि सही समय पर अपनी सुरक्षा करना और आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करना भी है। क्योंकि आजकल समय ऐसा है, हर कहीं पर कभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना बच्चियों को करना पड़ सकता है, इसीलिए सेल्फ डिफेंस उन्हें ज़रूर सिखाएं।
1: बिल्कुल, हर बेटी को ये समझाना होगा कि वो कमज़ोर नहीं है बल्कि सक्षम है। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है। यह डर को आत्मविश्वास में बदलता भी है। वो कहते हैं ना, मैं नाजुक हूँ ये भ्रम अब टूट जाने दो, मैं नाजुक हूँ ये भ्रम अब टूट जाने दो, मैं हौसलों को भी खुलकर मुस्काने दो, मैं चिंगारी भी हूँ मैं उजियारा भी हूँ, ज़रूरत पड़े तो अपने साहस का सहारा भी हूँ।

0: शरीर को नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है, यह डर को आत्मविश्वास में बदलता भी है। वो कहते हैं ना, मैं नाजुक हूँ ये भ्रम अब टूट जाने दो, मैं नाजुक हूँ ये भ्रम अब टूट जाने दो, मैं हौसलों को भी खुलकर मुस्काने दो, मैं चिंगारी भी हूँ मैं उजियारा भी हूँ, ज़रूरत पड़े तो अपने साहस का सहारा भी हूँ।
1: हाथों में हिम्मत आँखों में विश्वास रखूँ, हाथों में हिम्मत आँखों में विश्वास रखूँ, हर मुश्किल के आगे अपना सिर ऊँचा रखूँ, मैं बेटी हूँ मैं बेटी हूँ, मैं शक्ति हूँ पहचान मेरी यही, अपनी रक्षा करना भी अब जिम्मेदारी है मेरी।
0: बेटियों को सिर्फ पंख मत दीजिए, उन्हें उड़ने की हिम्मत भी दीजिए, क्योंकि आत्मरक्षा का हर हुनर उनके आत्मविश्वास की नई पहचान बना सकता है।
1: बिल्कुल बहनों, तो आप इन चीज़ों का रखिएगा ख्याल। हम आपसे मिलते रहेंगे और बातें हमारी यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन अब समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, तो लेते हैं आपसे इजाज़त। मैं शर्मिला,
0: मैं माधवी, तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

0: People were killed in separate lightning incidents during the last 24 hours across the state. Several people sustained injuries. Three deaths were reported from Hazaribagh district, while one person each died in Ramgarh, Palamu, Lohardaga, Godda and West Singhbhum districts. In FIFA World Cup, Mexico defeated South Korea 1-0 at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. Following a tactical scoreless first half where clear chances were sparse, the decisive breakthrough arrived in the 50th minute. India's LNG tanker Disha has successfully arrived at the Hague port in Gujarat after crossing the strategically important Strait of Hormuz. It is carrying 62,370 metric tons of liquefied natural gas from Qatar's Ras Laffan terminal. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heatwave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbh till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन की सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के

0: राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे

0: हजार करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9 1 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर

0: सुसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

अजब हौसले और भूपेंद्र के स्वर में फिल्म एतबार से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है किशोर कुमार के, फिल्म का नाम है अलग अलग।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत।

फिल्म रजिया सुल्तान से लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हैं कुमार शानू और साधना सरगम के। फिल्म का नाम है जुर्म।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में 5:30 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम व्यू 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है इस चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक

0: कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: समूह स्वर में अभी आपने सुना ये सुगम संगीत आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित रोजगार मेला 2026 का सीधा प्रसारण, जिसे दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
3: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while, he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
2: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
3: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज़ एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इन फैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
2: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगी श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।

0: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais.
1: Mm.
0: What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar Ya Karobar, Saath Hai Bharat Sarkar.
1: Mm.
0: What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में और हाँ बोलो इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं पहले ही हो चुके और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी कितने युवा उससे लाभान्वित हों और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे
0: yeah.
1: ये एक एनकरेजमेंट होता है और yes. कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
0: yeah,
1: आती
0: people will feel secure okay the government is there to help us out so we should not feel that okay I'm not going to achieve anything but let the, this our prime minister is given them an assurance that the government is there with you that is what he says in this motto no रोजगार या कारोबार साथ है
1: भारत सरकार जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी
0: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स The first part is support for the first-time employees, jinko pehli bar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one, after another 6 months, so after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits

0: rates are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है.
0: Yes.
1: बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं.
0: Yeah.
1: और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
0: Yes. See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service Portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
1: Hmm.
0: It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं?
0: That's true.
1: आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ
0: yeah.
1: बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025. It started last year till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
1: Hmm.
0: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
0: Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 saal.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this.

0: and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें, एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोर jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people.

0: plus seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: Yes, so it's full. Not a single seat is empty. People are, they're all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they have got their letter.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो, दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a Universal Account Number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे. और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बोके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. So and I am telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the super

0: superpowers in the world, bring the rank of a country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
0: दैट्स ट्रू. एंड यू नो आई अटेंडेड वन ऑफ दीज डेज, यू नो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you and he will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
0: yes,
1: तालकटोरा
0: yes.
1: स्टेडियम कैसे yes. भरा रहता था और yeah. बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात

0: होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में, और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही है इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना। तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं, और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज़्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के आ जा रहे हैं यहाँ से।
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable, for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and in mingles with them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your, he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
0: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है।
1: Yes.
0: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी।
1: Yeah.
0: है ना?
1: And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today they'll be, it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They have, they get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
0: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया। नहीं
1: yes.
0: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार।
1: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person
0: translate
1: किया है। Yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and his say, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
0: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा।
1: yes.
0: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतज़ार तो कुछ ही पलों का है, ज़्यादा नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं
1: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद द अदर डिग्निटरीज, ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेज, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन, ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री

0: श्री नरेंद्र मोदी जी का
1: एक बार
0: जोरदार तालियां हो जाए। देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
0: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
1: मैं मन्नत भाटिया
0: और मैं जयवर्धन गोयल,
1: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन।
2: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the desk.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
2: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
0: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
0: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
1: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome
0: एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
2: श्री मनसुख मांडविया, द मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ही वॉक्स टू द पोडियम टू गिव अ स्पीच।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान

वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी, आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट कर

0: 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana.

0: बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
1: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
1: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
0: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
1: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
0: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा

समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे।

देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को

अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ

महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है।

पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं। क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है।

0: हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नए रोजगार सृजित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, साथ ही व्यवस्था में भी कई बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलती है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से पिछले एक दशक में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना

0: युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है।
1: यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। वहीं देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम हुए। प्रदेश में ये कार्यक्रम जयपुर सहित जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। जयपुर के सीतापुरा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसमें अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का उपयुक्त साधन बनाया जाए। आज नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का जिक्र किया। श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में बहुत मदद की है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब व्यापक डेटा लगातार उत्पन्न किया जाए।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के तहत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। ये उपलब्धि युवा जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत और देश भर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विधानसभा परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम योगोत्सव का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में हुए इस योगाभ्यास में विधायक, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रदान करता है, साथ ही शारीरिक समन्वय, मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
3: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं। और योग से एक नई ऊर्जा का भी संचरण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं, ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सके।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। राज्य में अन्य स्थानों पर हो रहे योग कार्यक्रमों के तहत आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद संस्थान की ओर से हवा महल तक योगा रैली निकाली गया।

0: इसमें संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उधर पाली में आयुर्वेद विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास करवाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज से अगले महीने की 5 तारीख तक के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। इस अवधि में राज्य सरकार के विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध पर फिलहाल यथावत रहेगा। इसके साथ ही वर्षाकाल में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर भी स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों और पति पत्नी के मामलों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्य उन्नति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही अन्य कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में वरिष्ठ अधिकारियों ने युवा उद्यमियों से संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से भी संवाद किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और यहां के युवा एक से बढ़कर एक नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं।
1: राजस्थान में करीब 8,000 के करीब स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज है जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स तक हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज SI भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसमें 20,798 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जयपुर द्वारा समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी जाँच साक्षात्कार के समय की जाएगी। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे वर्तमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। गौरतलब है कि 1,086 पदों के लिए ये लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की गई थी। जयपुर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर निगरानी और कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर शहर के 15 स्थानों पर लगे 47 कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने जैसे मामलों में नियमित ई चालान जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रोबेशन पीरियड वाले राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से भी राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में हर महीने 800 रुपए की कटौती की जाएगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रल्हाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय से कर्मचारियों को सेवा के प्रारंभिक चरण से ही सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण उपलब्ध हो सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योग के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9 करोड़

0: 44 लाख से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कुशलगढ़ पंचायत समिति की बड़वास छोटी निशानावट और टिमेड़ा बड़ा ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में बांसवाड़ा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली चंद्रपोल गेट से शुरू हुई। जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा और आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश दत्त पांडे ने रैली को रवाना किया। इसमें स्काउट और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार भाबूर ने तलवाड़ा ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने चित्रा डूंगरी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और एएनएम आशा सहयोगिनियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और सभी पात्र लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र बांसवाड़ा में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत और समाजसेवी पूंजीलाल गायरी ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। जिला कलेक्टर ने छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर हैंडपंपों, टैंकरों और जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी ली। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम होने से समस्या सामने आई है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। खराब हैंडपंपों की मरम्मत भी कराई गई है। जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नारी चौपाल लगाई गई। कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी महिलाओं को सहायता राशि के चेक बांटे गए। बांसवाड़ा में युवा संबल मेले का आयोजन भी किया गया। इसमें जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से आए 812 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 431 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, जबकि 174 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि विभाग ने आत्मा प्रशिक्षण हॉल में प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित की। किसानों को प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी दी गई। इसके अलावा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी प्राकृतिक खेती विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रगतिशील किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग लिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जिले में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने लोगों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले की 9 पंचायत समितियों में चित्रकला, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इनमें लगभग 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जनजातीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में 6 जून से 26 जून तक आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के 262 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें 120 बालिकाएं और 142 बालक शामिल हैं। खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, खो खो और फुटबॉल, हैंडबॉल तथा बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

0: छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, नौजवान और उद्योगों एक सागे आगे बढ़वाऊ, नौकरी धंधारा मौका बनबारी गति बधेला। पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला। 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई। थर्ड ग्रेड अध्यापकों रा और चिकित्सा विभाग में तबादला माथे रोक रहवेला। और आरपीएससी एसआई भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हमारा राज माए नौकरी धंधारा नुआ मौका बनावन सारू कई योजनावां चलाई ची है और व्यवस्था माए जरूरी बदलाव करी चिया है। प्रधानमंत्री पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत आज करीब 2,400 करोड़ रुपये की रकम जारी कीनी। ई मौके श्री मोदी कहो कि नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बधवाऊ, नौकरी धंधारा मौका बधे है। वह केंद्र सरकार का नियु लाडला 10 साल में चलाई ची न्यारी न्यारी योजनावां रो जिक्र करता था का कहो के ए योजनावां मोटी तादाद में नौकरी धंधारा मौका बनाया। प्रधानमंत्री कहो के आ योजना नौजवाना और उद्योगा बीच मजबूत पुल रो काम कर रही है।
2: ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
1: प्रधानमंत्री नौजवाना सागे बातचीत कीनी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा समेत आखा देश माय 200 ठोड़ा क्षेत्रीय कार्यक्रम ही राखी चिया। जयपुर माय फिर राज्य स्तर रा कार्यक्रम माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला। इन जरिए 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेजी जावेला। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई ई कार्यक्रम सारू तैयारियां चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किस्ता माए कुल 6,000 रुपया री माली मदद दी जावे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानूनी प्रक्रिया रा हर दौर माए प्रौद्योगिकी ने असरदार तरीकों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दिनो है। वे आज नई दिल्ली माए 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 माए बोल रहा है। गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली रो जिक्र करता था का कहो कि आपराधिक न्याय प्रणाली ने देश रा हर रहवासी ने संविधान माय दिया जया हक हासिल करण रो उपयुक्त जरियो बनावन रो भगत आग्यो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली कई मुश्किल मामला नई आसान बनावन माय घनी मदद कीनी है। गृह मंत्री कहो कि फिलहाल इरा बूता रो केवल 10% ही काम लियो जा रियो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली अपराधियां रे पिछाण करण माए घणी असरदार है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
1: 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आज विधानसभा परिसर माए योग कार्यक्रम राखी चियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई माए करी जाए ई योगाभ्यास माए विधायक, विधानसभा सचिवालय रा अहलकार और कर्मचारी शामिल फिया। ई मौके देवनानी कहो कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन रो नजरियो

0: बतावे है व सगलाऊ योग ने रोजमर्रा रो हिस्सो बनावन रे अरज कीनी।
1: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि शरीर मन बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं और योग से एक नई ऊर्जा का भी संचरण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सके।
0: मुख्यमंत्री बचनलाल शर्माई आज वारा रहवास में थे विश्व योगासन चैंपियनशिप में तमगा जीतन वाला सागे योगाभ्यास कीनो। इस आगे राज्य में चल रहा योग कार्यक्रम तहत जयपुर रा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली निकाली ची। ये पाछे संस्थान रा शिक्षक और विद्यार्थियों री ओरों हवा महल ताई योग रैली निकाली ची। पाली में आयुर्वेद विभाग री ओरों सामूहिक योगाभ्यास करवाई चियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके भारतीय वायुसेना देश भर में योग सत्र राखेला। रक्षा मंत्रालय रे मुजब वायुसेना रा कर्मचारी वाना परिवार वाला सागे योग सत्र में शामिल भेला। वहां सागे स्कूली बच्चा और एनसीसी कैडेटी आखा देश में न्यारा न्यारा वायुसेना टेसना माथे रखा जावन वाला योग सत्र में शिरकत करेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार सरकारी अहलकारां और कर्मचारियां रा तबादला माथे रोक फिलहाल हटा दीनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग री ओर जारी हुकम रे मुजब 5 जुलाई ताई तबादला करया जा सकेला। हालांकि शिक्षा विभाग रा थर्ड ग्रेड अध्यापकां रा तबादला फिलहाल नी करया जावेला। इस आगे चौमासा माए बीमारियां रा पसारा री शंका न ध्यान राखता थका चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। हुकम रे मुजब घना मंदा कर्मचारियां और लोग लुगाई रा मामला माथे खास ध्यान दियो जावेला। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रा अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह नवाचार और उद्यमिता हलकाओं जुड़िया खास लोगों सागे आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नो हब में बातचीत कीनी। इन दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम रा विकास मौका और चुनौतियां रे बारा में चर्चा करी ची। कार्यक्रम में श्री सिंह सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष मुद्दा माथे चर्चा करता थका कहो के राजस्थान नवाचार और उद्यमिता ने बढ़ावो देवन माए खास काम कीनो है। वह स्टार्टअप इकोसिस्टम रो फायदो मोटा शहरां सागे दूर राजिना और समुदायां ताई पूगावन माथे जोर तीनो। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कांशी सिंह कहो कि प्रदेश माए 8,000 बत्ता स्टार्टअप है और नौजवान नुवी नुवी जुगत लगा रहा है। वह कहो कि स्टार्टअप रा मामला माए राजस्थान देश रा अगाड़ी राज्य माए शामिल है।
2: राजस्थान में करीब 8,000 के करीब स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज है जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स तक हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग आज SI भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो। आयोग रा सचिव राम न्यास मेहता बतायो कि 20,798 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू पास करी चिया है। पास हुआ उम्मीदवारा ने शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू जानकारी देती जावेला। आ उम्मीदवारा री पात्रता संबंधी जाँच इंटरव्यू री भगत करी जावेला। ध्यान जोग है कि 1,086 ओहदा माथे भर्ती सारू आ लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 न लीरी जी ही। जयपुर पुलिस यातायात नियम तोड़बा वाला के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई और कड़ी करती नी है। शहर में 15 ठोड़ा लगाई जिया 47 कैमरा रे जरिए वाहन चलावन वाला माथे ऑनलाइन तरीका निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस रा उपायुक्त योगेश गोयल बतायो कि तेज गति वाहन चलावन और लाल बत्ती पार करन वाला रा खिलाफ लगातार ई चालान जारी करिया जा रहा है। राज्य में प्रोबेशन पीरियड वाला सरकारी कर्मचारियां नई राज्य बीमा योजना रो फायदो दियो जावेला। बीमार प्रावधाई निधि विभाग कानून मिली जानकारी रे मुजब आ कर्मचारियां ने तन

तनख्वाह हुई राज्य बीमा प्रीमियम रा तौरों हर महीना 800 रुपया री कटौती करी जावेला आ व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 हूं लागू मानी जावेला रेलवे जोधपुर चेन्नई बीच हर सप्ताह खास रेलगाड़ी चलावन रो फैसलो किन्नो है उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के आ गाड़ी 27 जून नु 25 जुलाई ताई हर थावर न जोधपुर नु रवाना वेर सोमवार सिंजा चेन्नई पुगेला वापसी माए आ गाड़ी 30 जून नु 28 जुलाई ताई हर मंगलवार न चेन्नई उ रवाना वेर

0: 25 जुलाई ताई हर थावर न जोधपुर रवाना वेर सोमवार सिंजा चेन्नई पुगेला वापसी माए आगाड़ी 30 जून 28 जुलाई ताई हर मंगलवार न चेन्नई रवाना वेर गुरुवार न जोधपुर पुगेला आगाड़ी जयपुर सवाई माधोपुर भोपाल नागपुर और विजयवाड़ा समेत कई खास स्टेशन माथे रुकेला राज्य में अब अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा विद्यार्थियों सारू छात्रवृत्ति री योजनावां तहत अर्जी देती बगत निवास प्रमाण पत्र देवन री जरूरत नहीं रहेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रे मुजब ई फैसला रो मकसद विद्यार्थियों सारू अर्जी देवन री प्रक्रिया ने आसान बनावनु है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा उम्मीदवारां सारू प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनावां रो हर साल करीब 1,20,00,000 विद्यार्थियों नूं फायदो मिले है हाल ताई वजीफा सारू निवास प्रमाण पत्र जमा कराउणो जरूरी हो आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बढ़वाऊ नौकरी धंधा रा मौका बनवारी गति बधेला पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई थर्ड ग्रेड अध्यापकों रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला और RPSC SI भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो नमस्कार
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं रामस्वरूप विश्नोई और अश्विनी व्यास

0: किसान भाई राम राम। देखो चौमासेरी चाव में घनी प्रीत घनी ओळखाण और घनी हेतरे आगे कार्यक्रम रे इन फूट रे अंक माई छेकड़े तो रे ताई अथाई करण सारू बाजे मत है सुधीर भाई जी ही नाम बोलियो तो कही तू उड़ीक राखे कि आज कौन बोली बोलन आला आपरी हाजरी में हाजिर है सा हूँ रामस्वरूप बिश्नोई और मेरा आगे
1: मैं हूँ रामस्वरूप जी साथ है अश्वनी व्यास।
0: अश्वनी भाई आपरो इन कार्यक्रम में राजस्थानी गीता लोकगीता जानकारियारी खुशबू रहागे कई काम री बात देने दापे री बात खेती बाड़ी री बात रहागे स्वागत ऐसा और कार्यक्रम सुन नाला उड़ीक राखे कि आज आप ही काम हथ करा तो कहीं लाया हो थे बातचीत करने वास्ते।
1: रामस्वरूप भाई जिया थे बात कही कि किसान खेत सुनने वाला जिता भी अपना श्रोता है जिका सुनने की तैयारी कर रहा कि आखिर आप बात की विषय पर कर सा तो खेत जिका अपना भाई अपने खेती रा सागे सागे फल तो देवे ही है खेती रायने अपन है लेकिन अगर आप बैठे वृक्ष छायादार लगा लेवा तो छोटा छोटा पशुआ रे वास्तर छोटा छोटा जीव जंतुआ रे वास्तर रेवण रो साधन भी हो जावे और वो साधन हो जावे छायादार पेड़ जिकी छोटी पौध खेत में लाग सके तो खेतरी मिट्टी जिकी है वह भी जीवाश्मासु भर जावे और वे जीवाणु मिट्टी ने बहुत सशक्त करे।
0: अश्विनी भाई आपने और सुनने वाला ने ठा हुआ कि कई गाँव री ओढ़ खान तो बठेरे लागूड़ा दरखत हो या कर
1: बिल्कुल
0: दरखत देख गाँव रो डोल हामी आ जाए कि अठेरे लोग पर्यावरण रे प्रति आप री भूम रे प्रति आप रे भेड़प रे प्रति कितना जागरूक है और राजस्थान रो तो इतिहास अनूठो रियो है अठे कही जाए कि सिर सांठे जे जूंख बचे तो भी सस्तो जा आप इतिहासकारा री पूंजी हाँ जकर लारे बडेरा घणो त्याग करियो आपने त्याग करने री जरूरत कोनी बस मौको है और मौसम भी है बिरखा उड़ी है तो आप फूटरा फूटरा छोटा छोटा दरखत लगाओ बे छायादार हुए फलदार हुए तो कहणो कहीं एक तो जमीन खातर जिज्ञा रुदे कोनी खेतरी ही माथे लगा लो जटे फूटरा पेड़ कोई कह में टाली लगाई है कोई कह में नीम लगायो है कोई बड़ लगावे कोई गूंदा लगावे एक तो फल मिले जन सब्जी हुए फूटरो हुए अचार

0: ये आम राम रुपए कहीं के गुठलिया रहा
1: गुठलिया रहा
0: दाम।
1: तो लेकिन राम स्वरूप भाई एक बात और मैं थाने कहूँ,
0: बताओ साहब,
1: कि खेत रे मायने फलदार फूल और फूल आड़ा पेड़ जिका पर लगावा आ तो चुको काम है, लेकिन अपन जिका आसपास रा गोचर है बीमे भी अब आपा पौधारोपण कर सका बीज ला सका, क्योंकि अब धीरे धीरे मानसून करने आ रहे, तो देखो बरसात अभी होसी। अपन है जिका गोचर है एक काम करे प्रकृति दी हॉटस्पॉट रो
0: फूटरी बात।
1: अब हॉटस्पॉट किया लारले दिन आपा देखो कि ऑक्सीजन री कमी रे कारण बहुत लोगा ना अपनी जान गवानी पड़ी।
0: देखो कि तो माड़ो टेम आप याद रहना, और बी टेम लोग जागरूक भी हुआ
1: बिल्कुल
0: कि आपने प्रकृति खातर की करनो है, नहीं तो प्रकृति देखो आप रो तो रूप दिखा सी
1: बिल्कुल।
0: तो जरूरत अपनी आ है नम अश्विनी भाई आप इशारो कर दियो कि आप गोचर में लगा सको, प्याऊ रेखने लगा सको, गांवरी गुआड़ रे मध्य लगा सको हो, कठी लगाओ, बस जरूरत आ है कि आप री लगाने री नियत होनी चाहिए। खाली फोटो खिंचा ली, स्टेटस लगा लियो, या फिर आप चौकी रील बना ली, यूं तो काम चले को नहीं। आप बिने लगान बिल्कुल, बड़ो बिल्कुल। करोला और बिने पनपावला, एक टाबर वाले जहाँ पनपाणो पड़े, और शास्त्र तो कहवे कि एक पेड़ ने पनपाणो 100 पुत्रा री सेवा रे समान है।
1: बिल्कुल आज रे समय रे मायने तो चारों तरफ जो प्रदूषण आप देख रहे हैं, मिट्टी रो, पानी रो, हवा रो, अगर भी ने साफ करने रे बारे में आप सोचा, जिया आंधी में आप घर ने साफ करा तो झाड़ू सु मिट्टी बुआ रहा और बांडे नाकदा, लेकिन ये प्रदूषित पर्यावरण अगर आपने साफ करना तो बिरो एक ही तरीको है, छायादार पेड़, ऑक्सीजन, हवा, आपना गोचर हरा भरा जिका प्रकृति रो हॉटस्पॉट बने, तो बठे सु प्रकृति रो छोटो सृजन जिको है वो शुरू होवे, और सागे सागे जिकी खाद्य श्रृंखला है बाबी बठू शुरू होवे।
0: और अब देखो अश्विनी भाई आपनी लोक कल्याणकारी सरकार भी फूटरो कार्यक्रम चलावे एक पेड़ मारे नाम,
1: बिल्कुल
0: ऐसा कई कार्यक्रम है जिकारी बदौलत आप सब ज्यादा जुड़ाव जो राखो, तो ममता रिबा मूरत माँ और मारी याद में आप कोई पेड़ लगा पनपावला, तो मैं जानू हूँ कि इन राजस्थान ने आप पाछो मरुधरा ने हरी भरी बना सको। अब भूटरी अथई करी इर खातर मारकने देखो बागा में झूला गालन खातर बना बनी रो कोई गीतड़लो तो है, पण बाजे माथे बजावण खातर सुधीर भाई ने अर्ज करूँ कि आप खटको करो न चोखो कोई गीतड़लो बजाओ।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: तो सर अश्विनी भाई, बात यूं है कि थे बात फूट रही करी और बरसात रो मौसम में पेड़ पौधा लगावेला कई बात संदेशा में भी सुनने मिले। अगली बात एड़ी है कि अबार 1 जून से लेर 20 जून तई जहाँ मैं बात करी पहली आपने लोक कल्याण करी सरकार री, तो अपनी सरकार भी मिट्टी रे सुधार रे खातर, मृदा रे सुधार रे खातर, खेत बचावन नालो एक अभियान
7: चला रही,
6: लांठे तौर माथे चला रही है। बात थाने भी हम ही आगे हूं नाला भी समझ गया कि माटी ने क्या सुधार कर सका। हाँ, वह कहीं अश्विनी भाई की लोग बाग कहीं है कि इतना लालची हो गया, इतना स्वार्थी हो गया कि रातों रात तो लखपति बनना चाहे, ऊँ लागे जाने अगले महीने तो आप बेरे पेड़ी लगा दा, खेती कम करनी पड़े और फायदों ज़्यादा लेने पड़े, जन कहीं करे कि बे अंधाधुंध रासायनिक खाद रो प्रयोग करे भी।

0: माटी होगी गूंगी। अब देर कितो दई जीते क्षमता हुई भी तो दई खेत। तो भाई थार कने एक चुकली है जगह में 5 लीटर 5 धड़ी पानी आवे, थे भी मैं 8 धड़ी गालना चाहो तो वो कहीं हुई का टूटी का फूटी जन करनो कहीं है। आप इन माथे की कहना चाहे हूँ बात ने गणी बद्दी कर ली।
1: बिल्कुल, मृदा सुधार री अगर आप बात करा, खेतरी मिट्टी री आप बात करा, तो बीरे मायने अपने सबसे पहले किसान भाई ने एक चीज़ ध्यान रखनी है। ते बार सरकारी भी बात कर रहा था कि जिसको सॉयल हेल्थ कार्ड सरकार चला रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड,
0: भूठी बात बताइए आप
1: बीरो। सबसे पहला किसान भाई ने आपकी खेतरी मिट्टी की जांच करानी है। खेतरी मिट्टी रे मायने अपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास जैसा कई ऐसा
0: काम तत्व है
1: जिके अपनी फसल रे माने दाना आवन वास्ते सबसे ज्यादा जरूरी हो गए। लगातार एक ही जैसी फसल लेने से खेतरी मिट्टी रे मायने वे पोषक तत्व कम हो जावे। जब वे पोषक तत्व कम हो जावे तो खेतरी मिट्टी कमजोर हो जावे। तो स्वास्थ्य कार्ड जिको है वो हर 3 साल से एक बार किसान भाई ने आपरे खेतरी मिट्टी की जाँच कर और पतो कर लेना है कि किसे तत्वारी कमी हुई है, खेत ने किया अपन ने उपचारित करना है। खेतरी मिट्टी रो भी उपचार हो आजकल है तो वो अपन किया उपचारित करना है। और सागे सागे किसा किसा उन्नत बीजा सो आप खेती कर सका और किसी किसी फसल आपने फसल चक्र के माध्यम से खेत में लगानी है ताकि किसान भाई चोखो लाभ उठा सके।
0: अब देखो थे तो अश्विनी भाई गागर में सागर भर दियो, यहाँ लगे कि थोड़ा शब्द में अगली बात कह दी। एक तो खेत में जो कि आप खेती करा भी पोड़स ने बदलनी है, ये खेत में अगर आप मूंग बोयो है तो अगले साल आप बाजरी बो सको हो, तिल बो सको हो। कहने रो मतलब खेत ने पलटन फसल रो जो को चक्र है बिन अपनानो है। और सिंचाई वास्ते भी आप जल संरक्षण सारू बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपना सको हो। और जैविक खेती ने बढ़ावा देना है, गोबरी खाद है, हरी खाद है, जबकि दलहनी फसलों री जुताऊ खातर। और एक किसान रो सगड़ा जो को परम मित्र है जो कि आप केंचुआ के हो, बिरी खाद भी आप इस्तेमाल ले हो। और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड री आप बात करी नहीं, यूँ उठा पड़े कि किसान आप रे भी कार्ड ने संभाल रखे है कौन रखे है। कई बार आप काम री बात ने कही है कि थोड़ी किनारे कर दागी हूँ के फर्क पड़े है, फर्क घणो ही पड़िया करे है। ए बडेरा री देवड़ी बातें हैं जके में प्रकृति रे सागे जुड़ाव राखनो है। रासायनिक जकी खेती है, रासायनिक जका उर्वरक है बे काम ले लेओ, पण इतना ना लेओ कि बा जमीन ही गूंगी हो जाए।
1: सागे सागे राम स्वरूप भाई एक बात और बताऊं कि रासायनिक खादा सु तो खैर जमीन पर असर पड़े ही है, लेकिन किसान भाई जिके खेत में हमेशा काम करे याने स्वास्थ्य पर भी बेरो बहुत गंदो असर।
0: अरे जटकर निकला ना कई बार कहीं हुआ कि भी कांकड़ में ही हुरम आवे कि कहीं ना क्यों कहीं
1: बिल्कुल
0: जठेरा जीव जिंदा और बापड़ा बारो के अपराध है। जेरी लीक कई बार चुगो चुगले खत्म हो जाए, छोटा छोटा जिंदावर जगह काम रहे बे भी मर जाए। तो आप अपनी प्रकृति माथे निर्भर रहो और प्रकृति री गोद में रहो ला तो आप सुख पाओला। रब हूँ थाने पाछो गीत संगीत वाली गोद में ले
1: जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, सुना कार्यक्रम
0: आग गीत

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु परिवर्तन, हम क्या कर सकते हैं? यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके।
2: देखो, बात आपा करया नहीं पहली कि आपा जका संदेश सुना या फिर कोई काम री बात सुना, बेर मायने भी आपने प्रकृति रे खातर, पर्यावरण रे खातर, पेड़ पौधा रे खातर बात हुई करे। आपनो उद्देश्य ही वही है अश्विनी भाई, कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। रेडियो इर वास्ते ही

0: तो बारापा गीत सुनियो हीरो सो जन्म गवायो।
1: अब देखो अश्विनी भाई गमावनो तो है कोनी, अपन तो किन की कमावनो है।
0: बिल्कुल।
1: अब हूँ एक बात रोज गया करूँ राज कह दू तो थे हूं न तैयार हो गए।
0: बिल्कुल रामस्वरूप भाई आज क्या करे कि सुन नहीं आया। हाँ।
1: क्या करे कि मेहनत कर रहे मानवी मेहनत गुणरी खान मेहनत सु राजी हुए गुरु धनी भगवान ऐसा मेहनत करो जन राजी हुआ करे। तो अपनी मेहनत री जानकारी खातर आपने निजर करूँ कि अपना जगह कार्मिक हाल आरल दिना आपरा घर आया और अपना मकान गिन ले गया टापरो गिन ले गया भवन लिखियो मकान संख्या लिखी जन कई पूछा इन योजनाओं के फायदो हुई या जनगणना हुई मिनक गिनी जी ही आ खाली मिनक या घर गिनन खातर का ही नहीं कोई भी जनगणना हुए नहीं अश्विनी भाई पढ़े जुड़ा लोग जाने कि यूं ही कोई देश री योजना बने चाहे गरीबी हटावने री हुए चाहे टापरो बनावने री हुए चाहे पशु डांगरा खातर आपने कोई केंद्र खोलना हुआ चाहे अस्पताल खोलनी हुआ ऐसे के लिए ये चीज़ें जरूरी।
0: बिल्कुल। तो ये वास्तर ए जिका साथी आवे जनगणना करण वास्तर ओ एक पहलो चरण थो जिकर मायने मकान जनगणना हुई इरे बाद में अबे संख्या जनगणना भी होसी थोड़े टाइम रे बाद में। तो ये वास्तर आपने ध्यान रखना है कि जिका जनगणना कार्मिक आपने घरे आवे बियाने पूरी जानकारी सच्ची जानकारी और सही जानकारी देनी है ताकि आपने देश री सरकार सगड़ा आंकड़ा भेड़ा कर और देश रे विकास वास्तर किया नीतियारो निर्माण करनो है बहुत तय कर सके कोई ने भी बहकावे में आपने कुनी आनो। और रामस्वरूप भाई एक ध्यान रखना है अपने जनगणना
1: तो एक चीज ध्यान आवे अश्विनी भाई
0: बिल्कुल बताओ
1: घड़ी इशारो करे लंबा लंबा हाथ हूँ जाला देर बुलावे उन्हें अश्विनी आप रहे माफ करिया से सुधीर भाई भी आंखिया काटे
0: बिल्कुल
1: के थेकने अत ही पूरी करो के हूँ मारे बाजे मात की बजा दू। अब देखो जी तो को करे जावने को पण काल फेर हूँ आप रे खातर कार्यक्रम गुंजे गाँव गुआड़ सारू हाजिर हुआ लासा सीख दे रहो आप रे साथी रामस्वरूप बिस्नोई
0: और अश्विनी व्यास रा आज रा घना घना
1: राम राम।

ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 7:45 हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

अनूप जेलोटा के स्वर में गाई इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम आराधना।

ये आवाज़ें थी मुकेश और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था संगम। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम धर्म कांटा।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की

0: बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल सुन रहे हैं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था गाइड। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सरस्वती चंद्र से। आवाज़ें मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म आराधना में।
1: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: कदमों के निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है,
1: तुमको
0: मुझसे प्यार है।
2: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम का पहला गीत गणपतलाल डांगी और साथियों की आवाज़ में।

भूंगर खां की आवाज़ में अभी आपने सुनाई राजस्थानी लोकगीत। आइए सुनते हैं कालूराम प्रजापति की आवाज़ में ये गीत।

0: कालूराम प्रजापति के गाय लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस

0: प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था, इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: As our foreign policy,
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
2: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
5: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
4: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
6: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country.
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त है एक परिचर्चा का। आज की परिचर्चा का विषय है असहयोग आंदोलन, नई क्रांति का आगाज। इस परिचर्चा में प्रतिभागी हैं श्री इंदु भूषण गोयल, डॉक्टर सुखाराम और डॉक्टर ब्रजरतन जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं श्री मधु आचार्य।
1: नमस्कार। हमारा देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें ये जानना जरूरी है कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली। बोलने की आज़ादी, मनचाहा काम करने की आज़ादी। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनेक सपूतों ने प्राण नौछावर किए। जरूरत इस बात की है कि हम समझें कि आज़ादी व्यक्ति और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है।

0: और व्यक्ति जब तक ये नहीं समझ पाएगा कि आजादी कितनी अनमोल है, कितनी मूल्यवान है, और हमें उसे अक्षुण रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। हमारे भारतीय लोकतंत्र में संविधान निर्माताओं ने जहां एक तरफ व्यक्ति को अधिकार दिए, वहीं कुछ कर्तव्य भी दिए। ये दोनों इस बात का द्योतक हैं कि हम निरंतर आजादी की कहानी को दोहराते रहें और नई पीढ़ी के लोगों को उन तक पहुंचाते रहें। आजादी का अमृत महोत्सव उसी कड़ी का एक परिणाम है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश आजाद होने के बाद पैदा हुए। उन तक उन सब जानकारियों को पहुंचाना हमारा परम ध्येय बनता है। हम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में पूरा जाने, उनको पहचाने और उन सारे चरणों को हम अपनी आंखों के सामने से गुजारें जिन पर चलकर हम इस आजाद भारत तक पहुंच पाए थे। हमने बहुत गुलामी सही है, हमारे उस दौर के लोगों ने बहुत प्रताड़ना सही है, बहुत दुख सहे हैं, और उसके बाद जाकर हमें आजादी मिली है। आज हम असहयोग आंदोलन, जो हमारी आजादी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उसमें कई चीजें शामिल हुई और देश नई जागृति से जुड़ा, जिसे हम एक नई क्रांति का आगाज भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन को हम उस पर आज परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और मेरे साथ हैं माननीय इंदु भूषण जी गोयल, जो गांधीवादी विचारक हैं और खादी मंदिर के मंत्री हैं। इससे भी बड़ी बात है कि वो एक स्वतंत्र सेनानी परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दर्द को भोगा है, अंग्रेजी शासन के पीड़ा को उनके परिवार ने भोगा है। तो इनसे बेहतर हमें इस आंदोलन के बारे में कोई नहीं बता सकता। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखाराम जी, जो इतिहासकार हैं, डूंगर कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने इतिहास पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई है। एक इतिहासकार ही आज की पीढ़ी को ये बता सकता है कि आपका अतीत क्या था, आपका वर्तमान क्या है, और आपको कैसा भविष्य निर्मित करना है। इसके अलावा हमारे साथ हैं बृजरतन जोशी। बृजरतन जोशी मूलतः साहित्यकार और आलोचक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये गांधी दर्शन के अध्येता हैं। गांधी के दर्शन को इन्होंने बहुत करीने से देखा है, उस पर शोध किया है। तो मैं चाहूंगा कि हम असहयोग आंदोलन पर आज की बात आरंभ करते हैं, और सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि मैं मधु आचार्य, पत्रकार, साहित्यकार और रंगकर्मी। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक नाटकों में अभिनय किया और गांधी के विचारों से सदैव प्रेरित रहा। बातचीत आज के इस विषय पर आरंभ करते हैं, असहयोग आंदोलन नई क्रांति का आगाज। मेरा पहला निवेदन इंदु भूषण जी आपसे है कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण रहे, महात्मा गांधी को यह आंदोलन आरंभ करने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? क्योंकि स्वतंत्रता का आंदोलन तो अपनी गति से चल रहा था, लेकिन 1920 में अचानक इस आंदोलन को करने का निर्णय महात्मा गांधी जी को क्यों लेना पड़ा?
1: असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो है वो अगस्त 1920 की है, लेकिन इसके जो कारण थे उसमें ये था कि एक तो जलियांवाला बाग उसी समय हुआ था, एक साल पहले, जिसमें करीब 400 व्यक्तियों को एक तरह से हत्या की गई थी।
0: जी जी।
1: दूसरा, जो रॉयल एक्ट एक निकाला गया 1919 में, जिसके द्वारा ये था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो आज़ादी थी बोलने की, उसको ख़त्म किया गया था, और बिना कारण भी उसको पकड़ा जा सकता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। उस पर गांधी जी ने सोच विचार कर, चूँकि वो शुरू से ही अहिंसात्मक आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से करते आए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया। और सबसे पहला आंदोलन जो गांधी जी का था वो असहयोग आंदोलन ही था। असहयोग आंदोलन का नारा इस प्रकार दिया गया कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से संबंधित काम है उसको जनता न करे। जैसे वकीलों को कहा गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई भी वकालत नहीं करें, मतलब उनकी पैरवी नहीं करें। सर्विस क्लास को, जो नौकरी पेशे वाले थे, उनको कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित के जो काम है उनको नकारा जाए। विद्यार्थियों को कहा कि वो स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई छोड़कर इस असहयोग आंदोलन को शामिल करें। और उसमें आंदोलन ये था कि वो धरना प्रदर्शन जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सरकारी ऑफिस थे उनके आगे किया जाए। इसी क्रम में बहुत बड़ा यह आंदोलन हुआ और आखिर में इसको चोरी चोरा कांड के बाद बंद करना पड़ा। चोरी चोरा कांड में हालत ये हो गई कि किसान आंदोलन, गांधी जी का जो आंदोलन शुरुआत थी वो किसान

0: कोरोना से हुई थी, बिहार और गुजरात, बिहार में चंपारण और गुजरात में खेड़ा,
1: जी
0: वहाँ से इसका आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने और उसी को प्रमुखता उन्होंने दी। चोरी चोरा कांड में क्या एक किसानों ने जो गोरखपुर के पास ही है गांव, उस पुलिस जो एक थाना था उसको आग लगा दी। उस आग लगाने से गांधी को ये लगा कि हमारा आंदोलन हिंसात्मक हो रहा है, इसलिए हमें इसको एक बार वापस लें, फिर दूसरा कार्यक्रम चलाएं।
1: जी आपने बहुत सही जानकारी दी। अंग्रेज हुक्मरानों की जो जातियां बढ़ी थी उसके विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। हालांकि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को अपने कोलकाता अधिवेशन में पारित किया, लेकिन चूंकि तब तक आंदोलन अपना स्वरूप ले चुका था और गांधी चूंकि सत्याग्रही थे, गांधी को हम इस दुनिया का पहला सत्याग्रही कहते हैं क्योंकि वो हर बात अहिंसक तरीके से मनवाने के पक्षधर थे। तो आपकी बात बहुत सही है कि रोलर एक्ट और उसके बाद की घटनाएं, उन्होंने गांधी को जलियांवाला बाग जिसमें नरसंहार किया गया अंग्रेजी हुक्मरानों द्वारा, तो उसके बाद से गांधी को ये विचार असहयोग आंदोलन का आया। मैं डॉक्टर सुखाराम जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि असहयोग आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने कई कार्यक्रम घोषित किए, उनके कार्यक्रम थे, फिर सितंबर में जब कांग्रेस ने अपने कोलकाता अधिवेशन में इसे अपना अधिकृत आंदोलन बना दिया तब भी उन्होंने बहुत से कार्यक्रम दिए, तो वो कार्यक्रम क्या थे और उन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य क्या था कि असहयोग आंदोलन करने से क्या होगा, आजादी की लड़ाई किस तरह आगे बढ़ेगी, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
2: जी धन्यवाद मधु जी। आंदोलन के कार्यक्रमों की बात हम करें तो सबसे पहले गांधी जी ने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, एक विशिष्ट आयोजन उसमें रखा गया था, विशिष्ट अधिवेशन बुलाया गया था और इसी कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया है और इसके बाद में भी अंग्रेज भारतीयों को कोई रियायत देने की मूड में है नहीं, इसलिए अब सिवाय एक संघर्ष के हमारे पास कोई चारा नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रथम विश्व युद्ध की घटना असहयोग आंदोलन में बड़ा रोल निभाने वाली।
2: बिल्कुल सर, और इसी विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बढ़ी थी और उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने सिडनी रोलट की अध्यक्षता के अंदर एक आयोग बनाया गया था जिस आयोग का नाम था राजद्रोह आयोग, और 18 मार्च 1919 को ये एक्ट पास किया गया था, रोलट एक्ट पारित किया गया था और इसी के दौरान अब स्थिति यह हो गई कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर पकड़ करके असीमित समय तक उसको जेल में रखा जा सकता है और बिना कारण बताए, इसीलिए इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई। इसमें कहा गया कि नो वकील, नो दलील, नो अपील, इस तरह का एक कानून था। और इसी रोलट एक्ट के विरोध में पंजाब में प्रतिक्रिया हुई, लोगों में रोष आया, पंजाब में थोड़ी जागृति ज़्यादा थी इसीलिए वहाँ पर इस रोलट एक्ट के विरोध के अंदर एक सभा का अमृतसर के अंदर आयोजन किया गया था जिसको हम जलियांवाला बाग की सभा के नाम से जानते हैं, और इसी सभा में जनरल डायर ने, जो सभा का स्थल था उस स्थल पर उन्होंने मशीन गने लगा के, बख्तरबंद गाड़ियां लगा करके, और सभा स्थल का जो गेट था उस गेट को पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया और बिना चेतावनी दिए सभा पर गोलियां चलाई गई जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। हालांकि सरकारी रिपोर्ट जो हंटर कमेटी बनाई गई थी उसमें ये संख्या लगभग 300 के लगभग दी गई है, लेकिन कांग्रेस के कुछ सदस्यों की एक कमेटी अलग बनी थी जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि लगभग 1000 लोग मारे गए थे और लगभग 1200 लोग घायल हो गए थे, कुछ लोगों की जानें बची थी, जो लोग उस जलियांवाला बाग में कुछ कुएं थे उस कुएं में कूदने से लोग जो है वो जिंदा बच गए थे,
0: उस कारण मरे भी कुछ,
2: हाँ मरे भी कुछ अपाहिज हो गए। तो इसलिए ये आंदोलन बाद में शुरू हो रहा है। और एक और कारण जिसका मैं बात करना चाहूँगा वो है खिलाफत आंदोलन
1: जी।
2: क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और तुर्की का जो शासक था उसको खलीफा के नाम से जाना जाता था और खलीफा मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होता है। खलीफा के साथ इंग्लैंड के द्वारा मिसबिहेव किया जा रहा था, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये थी कि तुर्की को कई भागों में बांटा जा रहा था, तो भारत के दो मुस्लिम बंधु थे जिनको अली बंधु के नाम से जाना जाता है, जिनको मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से जाना जाता है, ये कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट लोग थे और इन्होंने भारत में आकर के भारतीय मुसलमानों को इस बात के लिए प्रेरित किया

0: अंग्रेजों के खिलाफ हमें
1: खिलाफत
0: आंदोलन करना चाहिए खलीफा के पक्ष में। खिलाफत का मतलब विरोध नहीं है यहाँ पे, खिलाफत शब्द जो है कॉमन वर्ड है जिसको अक्सर हम ये मान लेते हैं कि खिलाफत का मतलब प्रोटेस्ट करना, विरोध। खिलाफत का अर्थ है खलीफा की शक्तियों को कम कर रहा है इंग्लैंड, उसका विरोध करना, खलीफा की शक्तियों को बचाना है, उसकी खिलाफत को बचाना है, इसका अर्थ खिलाफत है।
2: बिल्कुल, आपने खिलाफत आंदोलन की अभी जिक्र किया, खिलाफत आंदोलन भी एक बड़ी भूमिका में था असहयोग आंदोलन के
0: जी।
2: हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, जलियांवाला बाग आपने और हमने, हम सब लोगों ने देखा है किस तरह से अंग्रेजी हुक्मरानों ने जुल्म किया
0: जी।
2: लोगों को कुएं में छोटे से में कूद कर अपनी जान देनी पड़ी, एक तंग गली से निकलना पड़ा।
0: बिल्कुल,
2: ये बहुत से कार्यक्रम उस समय असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने दिए, जैसे उन्होंने ये आह्वान किया कि सरकारी कर्मचारी काम करना बंद कर दें, स्कूल जाना विद्यार्थी छोड़ दें, कॉलेज जाना छोड़ दें, वकील न्यायालय में पैरवी करना छोड़ दें और श्रमिक श्रम करना छोड़ दें। ये सब वो कार्यक्रम थे जो असहयोग आंदोलन के चरण थे।
1: किसानों को कहा कि लगान नहीं दें।
2: बिल्कुल, और ब्रजरतन जी मैं आपसे खासकर चूंकि आज हमारी केंद्र सरकार ने भी जलियांवाला बाग को एक बड़े ही सुंदर तरीके से सामने रखा है लोगों के, ताकि लोग आजादी के उस संघर्ष को और वहां शहीद हुए लोगों के बारे में जान सके, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसने इस आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, क्योंकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो उसके बारे में आप जरूर बताएं।
3: धन्यवाद मधु जी। देखिए, मुझे आपके प्रश्न पे आने से पहले मुझे लगता है इस पे हम विचार जरूर करें जो अभी हमारी परिचर्चा के केंद्र से छूट रहा है, कि ये गांधी के द्वारा असहयोग का जो विचार प्रस्तावित किया गया उसका मूल क्या था। असहयोग के इतिहास को अगर आप विश्व इतिहास में जाकर देखेंगे तो 15वीं शताब्दी में फ्रांस का एक विचारक था, फ्रांस का विचारक जिसका नाम था एतिने द ला बोइसी, और उन्होंने द डिस्कोर्स ऑफ वॉलेंटियर सर्विट्यूड करके एक निबंध लिखा मात्र 23 वर्ष की उम्र में, जब वे लॉ कर रहे थे, और 33 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होगी। 38 पन्नों का एक निबंध लिखा, तो विश्व इतिहास में असहयोग या जिसे आप पैसिव रेजिस्टेंस या आप जिसे सविनय अवज्ञा ये सब जो इस्तेमाल करते हैं, इन सब का बीज कोशीय ग्रंथ वो था। उसके ग्रंथ से मॉन्टेन जो फ्रांस का निबंधकार और विचारक था वो प्रभावित हुआ, फिर ये विचार जो हेरल्ड लास्की और उसके बाद ये उस क्रम से होते हुए फिर आपके पास आते हैं ये विचार थोरो के यहाँ, थोरो से टॉल्स्टॉय, और आप देखते हैं टॉल्स्टॉय और थोरो का तो गांधी अपने जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव स्वीकारते हैं।
2: बिल्कुल स्वीकार,
3: ये तो हम कह नहीं सकते कि गांधी को एमिते द ला बोइसे के बारे में जानकारी थी या नहीं सीधे सीधे, लेकिन बोइसे का एक बहुत ज़बरदस्त वक्तव्य है और वो ये है कि तुम उनकी आज्ञा मानना छोड़ दो और अपने आप को स्वतंत्र समझो, ये जो तुमने दासता ग्रहण की है वो स्वैच्छिक है। हर एक तानाशाह, उसने तानाशाह के तीन प्रकार बताए, एक वो जो पैतृक दृष्टि से तानाशाह बन जाता है, दूसरा वो जो बलात् सत्ता पर अधिकार करके और तानाशाही मतलब सत्ता हथिया लेता है, और तीसरा आज जिस तरह से लोकतंत्र में निर्वाचित पद्धति से चुनकर आने के बाद वो तानाशाही रवैया जो अपनाया जाता है। इन तीन चीज़ों का उसने उदाहरण देकर समझाया कि दुनिया के इतिहास में ये तीन तरह की तानाशाहियाँ हैं और आप लोग कायरता की वजह से या शक्ति के अभाव से नहीं झुक रहे हैं, दासता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आप उदासीन हैं, आप में सजगता नहीं है और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तानाशाह के कंधे पर हाथ रख कर कहना है कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन आज से बंद कर रहा हूँ। और आप देखिए, उसने जो मूल विचार दिए वो राजनीतिक थ्योरी थी, वो पूरा राजनीतिक सिद्धांत था, और गांधी की मौलिकता इसमें थी जो असहयोग आंदोलन जिसका मूल बना, वो विश्व में उस विचार का व्यावहारिक प्रयोग था। यानी जैसे जो वैदिक ढंग से कह रहे थे, गांधी ने उसका सामूहिक रूप में प्रयोग करके दुनिया को दिखाया, ये गांधी की अपनी मौलिकता थी। और 15वीं शताब्दी से जो एतिने द ला बोइसी से जो यात्रा शुरू हुई, हेरल्ड लास्की और थोरो और टॉल्स्टॉय के माध्यम से गांधी तक जो पहुंची, बहुत संभव है गांधी ने, क्योंकि गांधी बहुत बड़े अध्येता थे और अपने पूरे जीवन में लाखों पुस्तकें उन्होंने अध्ययन की और 35,000 पत्रों का आदान प्रदान किया था, तो ये बहुत संभव है कि वो इनके नाम से और काम से परिचित रहे हैं, लेकिन ये कहीं अप्रामाणिक सोर्स नहीं मिलता कि गांधी ने एतिने द ला बोइसी को पढ़ा था, लेकिन वो इनके विचारों को एकदम अक्षर सा मानते थे और उन्हीं के बताए मार्ग पर उन्होंने व्यवहार में चलकर दुनिया को बताया। रही बात दूसरी, जिसमें कि अपन ने ये जानने की कोशिश करें कि जलियांवाला बाग एक इंस्टेंट, मतलब जैसे कहते हैं तात्कालिक कारण था, जैसे कहते हैं चाय के प्याले में तूफान ला दिया, बरतानिया हुकूमत हिल उठी थी, क्योंकि गांधी की जो स्वैच्छिक दास्ता के जो असहयोग किया या स्वतंत्र बोध को विकसित करने की जो पद्धति थी वो

0: प्राथमिक थी। तो ये इसकी ताकत का कमाल था कि हजारों लोगों ने सीने पे गोलियां खाई और वो गोलियां खाकर लोग वहां से भागे नहीं। और ये जो डर था, मतलब एक खास किस्म का भय का वातावरण ब्रिटिश सत्ता के मन में उत्पन्न हुआ कि ये इस
1: जी
0: गांधी ने इन लोगों को इतना मजबूत बना दिया है कि ये गोली से नहीं डरते। और आप देखिए कि उस आंदोलन की एक बड़ी और जिसकी तरफ लोग कम इशारा करते हैं कि ऐसे सैकड़ों बच्चे भी उस आंदोलन मतलब उसमें शहीद हो गए जो माँ की छाती से चिपक कर दूध पी रहे थे। उन्होंने भी स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने जीवन के प्रांगण में उतरने से पहले ही सारी चीज़ों को उन्होंने मतलब त्याग करके और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। तो ये जो जबरदस्त सजगता और अपने प्रति जो उदासीनता के भाव का त्याग करके अंदर स्वातंत्र बोध को विकसित करने की पद्धति गांधी ने जो दी वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास में अप्रतिम है। और इसलिए जो जिसे हम कहते हैं कि ये जो गांधी जैसे सविनय अवज्ञा या पैसिव रेसिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध या असहयोग आंदोलन ये सारे शब्द एक ही है, तो इसकी यात्रा में गांधी सबसे बड़े और सबसे उन्नायक व्यक्तित्व के रूप में और शक्ति देने वाले व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं।
1: बहुत सुंदर बात कही आपने, असहयोग शब्द को पूरी तरह से परिभाषित किया। लेकिन जलियांवाला बाग का जब कांड हुआ तो उस कांड ने हमारे बहुत से लोगों को खोया, लेकिन लोगों में जागृति भी खूब हुई। जागृति न केवल उस समय के पत्रकार में हुई, उस समय के साहित्यकार में हुई, हर वर्ग ने लोगों को जागृत करने का काम किया। इसका सबसे बड़ा काम यह था कि उसने लोगों में आजादी के लिए जागृति पैदा की। और गांधी ने जो दे दिया कि हमारा अंतिम लक्ष्य स्वराज्य है, और उसके लिए लोगों को जगाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि तक लौटा दी। तो मैं सुखाराम जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या मानते हैं कि इस जलियांवाला कांड की असहयोग आंदोलन की नींव में क्या भूमिका थी?
2: बिल्कुल मधु जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जलियांवाला बाग जो था ये आंदोलन में एक तरह से तात्कालिक कारण इसको मानते हैं हम इतिहास में, और क्योंकि जलियांवाला बाग के कारण ही आप देख रहे हैं कि खिलाफत और गांधी जी, खिलाफत आंदोलन के मूवमेंट के जो नेता और गांधी जी थे वो दोनों एक साथ आए और आकर के, और गांधी जी ने ये समझा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता या सांप्रदायिक सौहार्द का एक सबसे अच्छा अवसर है, तो इस अवसर को हमें यूज करना चाहिए, काम में लेना चाहिए। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि इसी आंदोलन में एक सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहा, सिवाय एक केरल में एक त्रावणकोर में मोपला विद्रोह हुआ, वो एक अपवाद है, उसको छोड़ करके हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक साथ मिलकर के लड़ा। और जहां तक
0: यहाँ यहाँ मुझे एक एक चीज जान पड़ती है सुखाराम जी, मैं बीच में आपको
2: जी
0: रोक रहा
2: जी
0: हूँ, कि असल में जो असहयोग आंदोलन था उसका एक दूसरा आप देखते हैं कि जो रूप निकल कर आया कि गांधी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में किसी मुस्लिम मंच पर जाकर उसकी अध्यक्षता करने वाले, वो भी
2: बिल्कुल
0: मुसलमानों के प्रतिनिधि मंच पर जाकर
2: बिल्कुल
0: अध्यक्षता करने वाले पहले महापुरुष के रूप में वहां अवतरित होते हैं।
2: गांधी
0: और न केवल वहां जाकर वो उनकी साथ तादाद में बिठाते हैं, बल्कि वो जो आज हम जिस धर्मनिरपेक्ष राजनीति के मुक्त गगन में विचरण कर रहे हैं उसकी भूमिका वहां तैयार होती है। और 22 में फिर वो जब रचनात्मक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें कौमी एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, बुनियादी शिक्षा और मतलब परस्पर जो है ये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, खासकर
3: हरजन
0: खादी
3: उधार,
0: और चरखा आदि की जो
3: हरजन उधार चरखा,
0: हाँ
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: जी
1: चरखा
0: जी
1: और
0: जी
1: खादी,
0: बिल्कुल आप
2: रजरतन जी
1: उससे
2: की
1: लोगों को धार्मिक रूप से जो विखंडन करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, महात्मा गांधी ने उसको जोड़ने के लिए ये सारे काम किए
2: बिल्कुल
1: थे।
2: बिल्कुल
3: मैं
1: बिल्कुल
3: एक
1: बहुत सही कहा।
3: मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी का जो कार्यक्रम था उसमें जो आंदोलन और आश्रम दोनों पद्धति से उन्होंने जन आंदोलन को खड़ा किया और साथ साथ कार्यकर्ता तैयार किए। सबसे बड़ी बात, हर जिले में और हर गांव में उनका प्रतिरूप खड़ा किया।
2: बिल्कुल,
3: आश्रम
2: बिल्कुल
3: से द्वारा तैयार किए हुए कार्यकर्ता गांव में आए, उनको लोग वहाँ के लोग लोकल लोग कहने लगे ये यहाँ के गांधी हैं। तो
2: बिल्कुल
3: इसमें जो गांधी की एक बड़ी बात थी वो ये थी कि उन्होंने जनमानस को तैयार किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और निर्भय बनाया। कोई भी आंदोलन करना है उसमें सबसे बड़ी बात होती थी निर्भयता, कि भाई जेल भी जाओ, लाठी भी खाओ, लेकिन हमें अहिंसा रूप में ही काम करना है। और उन्होंने जो खादी का काम, एक चर्चा आई, खादी का जो रचनात्मक कार्यक्रम था ये साबरमती आश्रम से हुआ। उसमें कोचरबा एक गांव था, उससे वहाँ से इन्होंने शुरुआत की और चरखे, सबसे पहले खड्डी पर उन्होंने काम किया, उसी खड्डी पर काम करने से जो कपड़ा तैयार हुआ उसका नाम पड़ा खद्दर। शुरू में
2: बिल्कुल
3: खद्दर था,
2: बिल्कुल
3: फिर बाद में जब एक्ट बना तो इसका नाम खादी हुआ।
1: खादी है।
3: और उस खद्दर को बनाते समय कोचरबा में उनको सूत की

0: समस्या आई कि सूत अभी हम मिल से लेकर कर रहे हैं कि सूत भी क्यों नहीं गांव के हिसाब हो। तो उन्होंने गांव को महिलाएं पकड़ी जिनके पास पुराना किसान चरखा था, उस पर सूत कतवाया और फिर उन्होंने ये माना कि इससे हम एक बड़ी क्रांति कर सकते हैं। इसलिए चरखा को अहिंसात्मक रूप में एक चरखा मानकर उन्होंने इसका बीज बोया।
1: बिल्कुल, गोयल साहब की बात बिल्कुल सही बात है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ब्रजरतन जी की बात को पूरा करता हूँ कि गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो इस आंदोलन में, हम देख रहे हैं कि कोई भी एक हिंदू नेता मस्जिद में जाके भाषण दे रहा है, गांधी जी ने पहली बार मस्जिद में और मुस्लिम औरतों को संबोधित किया इस आंदोलन में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कि हमें बाद के आंदोलन जो थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय में ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। भले ही खिलाफत आंदोलन या खिलाफत का मुद्दा समाप्त हो गया, फिर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधा मिला करके और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। सरकारी उपाधियों के त्याग की बात की थी, जैसे कहा कि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि का त्याग कर दिया और गांधी जी ने स्वयं केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया सबसे पहले।
0: बिल्कुल,
1: जो 1916 में गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के बदौलत मिली थी, तो गांधी ने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी उपाधि का परित्याग करता हूँ और राजकीय उत्सवों में भाग नहीं लेने की उन्होंने शपथ दिलाई। इसके अलावा प्रांतीय और जो केंद्रीय विधानमंडल है उनके अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, न चुनाव लड़ने हैं, राजकीय न्यायालयों का बहिष्कार करना है, शिक्षण संस्था जो भी अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं उनका विरोध करने की बात इस आंदोलन में कही गई और विदेशी माल का जो बहिष्कार हुआ है। गांधी जी कहते हैं कि हम जब टोली लेकर के जाते थे, ट्रेनों में बैठ करके जाते थे, तो जगह जगह स्टेशन पर लोग इकट्ठे होते तो हम लोगों से आह्वान करते कि आप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दीजिए। तो लोग कहते कि कपड़े नहीं है पहनेंगे क्या, तो वो कहते थे कि कपड़े नहीं है तो पूरे कपड़े आप बहिष्कार करो, जरूरी नहीं है आप टोपी का बहिष्कार कर दीजिए आप, या कोई छोटा मोटा एक सांकेतिक रूप से ही करिए लेकिन कर दीजिए, तो लोग तुरंत प्रभाव से वो करते।
2: बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि गांधी ने खादी का सिद्धांत और सूत्र केवल इसीलिए दिया कि वो लोगों से विदेशी कपड़े छुड़वाना चाहते थे।
1: बिल्कुल,
2: वो हर मोर्चे पर एक एक नागरिक को जागृत करना चाहते थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन वो आंदोलन था जो एक नई क्रांति लाया स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के। बहुत सुंदर बात आपने कही और मैं आपको एक छोटे से प्रसंग के साथ इस बात को पूरा करूंगा कि जब महात्मा गांधी चंपारण गए तो उन्होंने वहां सब लोगों को, हर जाति और धर्म के लोगों को बाहर आंदोलन के लिए बुलाया, लेकिन तीन महिलाएं एक मकान की खिड़की में खड़ी रही, बाहर नहीं आई। उनके साथ कस्तूरबा थी, तब उन्होंने कस्तूरबा को जाके कहा कि आप जाके देखिए कि महिलाएं बाहर क्यों नहीं आ रही है। वो भीतर जाकर आई और बाहर आकर उन्होंने जब बताया कि उन तीन महिलाओं को वहां के जमींदार ने केवल एक साड़ी दे रखी है, एक दिन में एक महिला एक साड़ी पहनती है और दो महिलाओं के कोई तन पर कपड़ा नहीं होता, इसलिए वो बाहर नहीं आई। और उसी दिन से गांधी ने अपने शरीर के कपड़ों का परित्याग किया था और वो नंगे सिर घुमा करते थे, नंगे कपड़े पहने हुए घुमा करते थे और खादी का उदय उसकी बड़ी देन है। हमने असहयोग आंदोलन के विभिन्न रूपों पर बहुत बात की है। बिल्कुल, मैं धीरे धीरे आप सब लोगों से विचार चाहूंगा कि असहयोग आंदोलन ने एक नई क्रांति का सूत्रपात जरूर किया, लेकिन आप तीनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप ये जरूर बताएं कि असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या रहे, असहयोग आंदोलन आखिर हमें कहां ले गया। और मैं चाहूंगा शुरुआत ब्रजरतन जी करें।
3: असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में स्वराज्य के प्रति प्रखर चेतना का उदय हुआ और वहां से एक ऐसी जनजागृति व्यापक जन समुदाय में आई और भारत की जनता को यह समझ में आया कि प्रकृति ने हमें स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित और पुष्पित करने के लिए इस धराधाम पर भेजा है, इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना है हर हाल में, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे यंत्र के प्रति हो। सब प्रकार की दासताओं से मुक्त होकर स्वैच्छिक दासता का परित्याग करते हुए स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ना है।
2: इंदु भूषण जी, आप जरूर बताएं कि असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या रहे, उनका नतीजा क्या निकला।
0: सबसे ज्यादा तो गांधी जी के द्वारा जो जन जागृति की गई उसमें उन्होंने जनता को निर्भय बनाया, सत्याग्रह के प्रति आग्रह करने का बताया कि भाई सत्य के प्रति आपका आग्रह होना चाहिए और निर्भय होकर प्रदर्शन, सत्ता के खिलाफ अगर आपकी जो मानसिकता है

0: भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सरकार द्वारा, उसके खिलाफत करनी चाहिए आपको, और खुले मन से करनी चाहिए और सामूहिक रूप से आप जागृत होकर करें।
1: खिलाफत क्या सूत्र असहयोग आंदोलन ने दिया? सुखाराम जी, आप क्या मानते हैं असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या रहा?
2: देखिए सर, खिलाफत का एक ही सूत्र था कि भारतीय जनमानस के मन से भय को खत्म कर दिया। अब अंग्रेजी राज का भय जो था वो लोगों के मन से निकल गया। गांधी जी ने कहा कि जेलों के दरवाजे चौड़े कर दो और हर एक व्यक्ति जेल पहुंचे उसी प्रकार जैसे एक दूल्हा दुल्हन के कक्ष में पहुंचता है। इसलिए अब जेलों का भय नहीं है, किसी प्रकार का अंग्रेजी आतंक अब नहीं रहा है। दूसरे परिणाम की हम बात करें तो कांग्रेस, जिस पे अभी तक ये उसके बारे में ये कहा जाता था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की संस्था है, उच्च वर्गीय लोग और मध्यम वर्गीय लोगों की संस्था है, अब वो एक अखिल भारतीय संस्था बन गई है। उसकी पहुंच शहरों से गांवों और छोटे छोटे कस्बों तक उसकी पहुंच हो गई है, इसलिए उसका जनाधार बहुत ही व्यापक हो गया है। अब उससे किसान भी जुड़ गया है, उससे श्रमिक भी जुड़ गया है, उसमें बुजुर्ग भी जुड़ रहा है, बच्चा भी जुड़ रहा है, महिलाएं भी जुड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, असहयोग आंदोलन स्वाधीनता क्रांति का एक नया सूत्रपात था, ये बात इस चीज से साबित होती है, और वो भी अहिंसक तरीके से, जिसके लिए महात्मा गांधी जाने जाते थे। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत की आजादी में असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा कदम था जिसने हिंदुस्तान की जनता को स्वराज्य के अधिकार के लिए जागृत किया, उसमें चेतना जगाई। आज की इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए मैं इंदुभूषण जी गोयल आपका, बृजभूषण जी जोशी आपका, और डॉक्टर सुखाराम जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने तथ्यपरक जानकारी दी, और मैं अपनी तरफ से भी मधु आचार्य आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
2: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: असहयोग आंदोलन नई क्रांति का आगाज, इस विषय पर अभी आपने सुनी परिचर्चा। प्रतिभागी थे श्री इंदुभूषण गोयल, डॉक्टर सुखाराम और डॉक्टर बृजरतन जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे श्री मधु आचार्य। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होगा उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान।

मुझसे रिश्ता बनाने से पहले, मुझसे रिश्ता बनाने से पहले पूछ लेना फलाने से पहले, और रास्ते का मुशाहिदा कर ले पाँव उस पर जमाने से पहले। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर शाइस्ता महजबीन आपके लिए लेकर आई हूँ मैं कुछ खास, यहाँ

0: हिस्सा के इस प्रोग्राम में शब के इस पहर में आज हम सुनेंगे अविनाश जोशी साहब का बेहतरीन कलाम। नौजवान नस्ल की पैरवी करते हैं और उभरते हुए बेहतरीन शायर हैं। उनकी शायरी, उनका कलाम तहत में भी और तरन्नुम में भी, उनके शायरी में जिंदगी की हकीकतें और मोहब्बत भी नजर आती है।
1: और बात करेंगे उर्दू अदब के मुमताज तरीन मकबूल शायर फैज अहमद फैज की, लब खोल के लब आजाद हैं तेरे। इस शायर की बात करेंगे और गजलें भी सुनाएंगे। तो सामीन, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम शब के इस पहर में आता है, तो शब के इस पहर में जब खूबसूरत गजलें भी आपको सुनाई जाएं तो प्रोग्राम मजीद खूबसूरत भी बन जाता है और आपको भी पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज खूबसूरत कलाम
0: लिया अविनाश जोशी साहब का ये कलाम।
2: और इस महफिल को शुरू करने से पहले मैं एक मतला और एक शेर तरन्नुम से पेश करना चाहता हूँ। देखें कि छोड़ा नहीं है गुल कोई भंवरों के वास्ते, छोड़ा नहीं है गुल कोई भंवरों के वास्ते, चुन ला

और इस महफिल को शुरू करने से पहले मैं एक मतला और एक शेर तरन्नुम से पेश करना चाहता हूँ। देखें कि छोड़ा नहीं है गुल कोई भंवरों के वास्ते, छोड़ा नहीं है गुल कोई भंवरों के वास्ते, चुन लाए फूल सब तेरी जुल्फों के वास्ते, चुन लाए फूल सब तेरी जुल्फों के वास्ते, अब शहर में बचा नहीं है रंग कोई भी,

रास्ते। अब देखिए कुछ गज़लें तहत के अंदर, मतलब मुलाहिज़ा करें कि इल्ज़ाम एक यह है चरागों के नाम पर, इल्ज़ाम एक यह है चरागों के नाम पर, परवाने मर रहे हैं उजालों के नाम पर, इल्ज़ाम एक यह है चरागों के नाम पर, परवाने मर रहे हैं उजालों के नाम पर, बेचैनियां भी बढ़ रही मन भी उदास है, बेचैनियां भी बढ़ रही मन भी उदास है, आती नहीं है नींद भी ख्वाबों के नाम पर, वादा किया गया था सितारों की सैर का, वादा किया गया था सितारों की सैर का, जुगनू चमक रहे हैं सितारों के नाम पर, वादा किया गया था सितारों की सैर का, जुगनू चमक रहे हैं सितारों के नाम पर, है फूल और भी यहाँ खुशबू लिए मगर, है फूल और भी यहाँ खुशबू लिए मगर, बागों में तितलियाँ हैं गुलाबों के नाम पर, बागों में तितलियां हैं गुलाबों के नाम पर। और मतला दो शेर देखिए बहुत ही ताज़ा, कि पास से दिखती नहीं, पास से दिखती है जब सच्चाई किसी की, पास से दिखती है जब सच्चाई किसी की, आती नहीं नज़र फिर अच्छाई किसी की, पास से दिखती है जब सच्चाई किसी की, आती नहीं नज़र फिर अच्छाई किसी की, शख्सियत छुपाने में माहिर हैं अब सभी, शख्सियत छुपाने में माहिर हैं अब सभी, चेहरा है किसी और का परछाई किसी की, शख्सियत छुपाने में माहिर हैं अब सभी, चेहरा है किसी और का परछाई किसी की, हद से ज़्यादा रोशनी है तेरे हुस्न पे, हद से ज़्यादा रोशनी है तेरे हुस्न पे, नज़दीकी छीन लेना बिनाई किसी की, हद से ज़्यादा रोशनी है तेरे हुस्न पे, नज़दीकी छीन लेना बिनाई किसी की। और गज़ल से शेर देखें कि मैं चेहरे को निहां रख कर लबों पे बस दुआ रख कर, मैं चेहरे को निहां रख कर लबों पे बस दुआ रख कर, सभी रिश्ते निभाऊंगा मगर खुद को जुदा रखकर, मैं चेहरे को निहां रखकर लबों पे बस दुआ रखकर, सभी रिश्ते निभाऊंगा मगर खुद को जुदा रखकर, जिसे ना वक्त भर पाया ना ही मरहम कभी कोई, जिसे ना वक्त भर पाया ना ही मरहम कभी कोई, अजब सा जख्म पनपा है सभी से वास्ता रखकर, जिसे ना वक्त भर पाया नहीं मरहम कभी कोई, अजब सा जख्म पनपा है सभी से वास्ता रखकर, सभी खुशियाँ हमारी भी तो औरों से ही होती हैं, सभी खुशियाँ हमारी भी तो औरों से ही होती हैं, नहीं होता है खुश कोई कभी सबको खफा रखकर, नहीं होता खुश कोई कभी सबको खफा रखकर। और शेर बतौर ख़ास देखें कि न जाने कब समझ जाए वो आज़ादी की सब बंदिश, न जाने कब समझ जाए वो आज़ादी की सब

अंदेश सो गुंजाइश रखी है मैंने भी पिंजरा खुला रखकर, सो गुंजाइश रखी है मैंने भी पिंजरा खुला रखकर। और गजल से चंद अशार की, आँखों पे मर गया हूँ या हुस्ने कमाल पर, आँखों पे मर गया हूँ या हुस्ने कमाल पर, अटका हुआ हूँ कब से मैं बस इस सवाल पर, आँखों पे मर गया हूँ या हुस्ने कमाल पर, अटका हुआ हूँ कब से मैं बस इस सवाल पर, मिट्टी की किस पे होती है तकदीर मुनहसिर, मिट्टी की किस पे होती है तकदीर मुनहसिर, कूजागरों के हाथ पे पहिए की चाल पर, कूजागरों के हाथ पे पहिए की चाल पर, अब आपकी नसीहतों से भर गया है मन, अब आपकी नसीहतों से भर गया है मन, सो छोड़ दीजिए मुझे मेरे ही हाल पर, सो छोड़ दीजिए मुझे मेरे ही हाल पर, आँखों को उसकी देख के ऐसा लगा मुझे, आँखों को उसकी देख के ऐसा लगा मुझे, उसके बहुत सवाल हैं मेरे सवाल पर, आँखों को उसकी देख के ऐसा लगा मुझे, उसके बहुत सवाल हैं मेरे सवाल पर। और शेर हैं देखिए कि, काम से तो आपके शिकवा नहीं हैं, काम से तो आपके शिकवा नहीं हैं, पर तरीका काम का अच्छा नहीं है, काम से तो आपके शिकवा नहीं हैं, पर तरीका काम का अच्छा नहीं है, गौर करना है मुझे हर आदमी पर, गौर करना है मुझे हर आदमी पर, अब मेरे अंदर कोई दर्जा नहीं है, गौर करना है मुझे हर आदमी पर, अब मेरे अंदर कोई दर्जा नहीं है, क्या गजब वो छल कपट करता है सबसे, क्या गजब वो छल कपट करता है सबसे, आईने के साथ भी सच्चा नहीं है, क्या गजब वो छल कपट करता है सबसे, आईने के साथ भी सच्चा नहीं है, वो हमेशा साथ तो दिखता है लेकिन, वो हमेशा साथ तो दिखता है लेकिन, हर कहानी का मेरी हिस्सा नहीं है, वो हमेशा साथ तो दिखता है लेकिन, हर कहानी का मेरी हिस्सा नहीं है, शक की चिंगारी लगी रिश्ते में सो अब, शक की चिंगारी लगी रिश्ते में सो अब, खाक होने के सिवा रास्ता नहीं है, शक की चिंगारी लगी रिश्ते में सो अब, खाक होने के सिवा रास्ता नहीं है, फिर मोहब्बत पे ले आए बात को तुम, फिर मोहब्बत पे ले आए बात को तुम, खैर इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, फिर मोहब्बत पे ले आए बात को तुम, खैर इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। और गजल से शेर है कि, खेल जब तक आपका चलता रहेगा, खेल जब तक आपका चलता रहेगा, हारने का डर भी तो पलता रहेगा, खेल जब तक आपका चलता रहेगा, हारने का डर भी तो पलता रहेगा, हर तरफ है दोस्तों की भीड़ फिर भी, हर तरफ है दोस्तों की भीड़ फिर भी, एक खालीपन मुझे खलता रहेगा, हर तरफ है दोस्तों की भीड़ फिर भी, एक खालीपन मुझे खलता रहेगा, फिर तरफदारी मेरी करने लगा है, फिर तरफदारी मेरी करने लगा है, कब तलक तू मुझसे यूं जलता रहेगा, फिर तरफदारी मेरी करने लगा है, कब तलक तू मुझसे यूं जलता रहेगा, दिल लगी करनी पड़ेगी थोड़ी मुझसे, दिल लगी करनी पड़ेगी थोड़ी मुझसे, वरना जैसा है वही चलता रहेगा, दिल लगी करनी पड़ेगी थोड़ी मुझसे, वरना जैसा है वही चलता रहेगा। और गजल से शेर है कि, एक नया हर रोज बहाना होता है, एक नया हर रोज बहाना होता है, जब भी उसके घर को जाना होता है, एक नया हर रोज बहाना होता है, जब भी उसके घर को जाना होता है, जब भी घर की आग सड़क पर लगती है।

जब भी घर की आग सड़क पर लगती है, मुखबिर तब जाना पहचाना होता है। जब भी घर की आग सड़क पर लगती है, मुखबिर तब जाना पहचाना होता है। उसी तरफ चलता जाता है टूट के भी, उसी तरफ चलता जाता है टूट के भी, जाने कैसे दिल दीवाना होता है। उसी तरफ चलता जाता है टूट के भी, जाने कैसे दिल दीवाना होता है। मन का चाहा कब मिलता है दुनिया में, मन का चाहा कब मिलता है दुनिया में, मन चाहा तो बस अफसाना होता है। मन का चाहा कब मिलता है दुनिया में, मन चाहा तो बस अफसाना होता है। धीरे धीरे बस कमियां रह जाती है, धीरे धीरे बस कमियां रह जाती है, जैसे जैसे शौक पुराना होता है। धीरे धीरे बस कमियां रह जाती है, जैसे जैसे शौक पुराना होता है। और गज़ल से चंद अशआर हैं कि जब सितारों की चमक हो जाएगी, जब सितारों की चमक हो जाएगी, तीरगी की तब झिझक हो जाएगी। तुम खिजा की खूबियां तब देखना, तुम खिजा की खूबियां तब देखना, जब गुलिस्तां की महक हो जाएगी। तुम खिजा की खूबियां तब देखना, जब गुलिस्तां की महक हो जाएगी। चाहतों के जाविये से देखिए, चाहतों के जाविये से देखिए, दिल में जो है सब कसक खो जाएगी। कर लिया गर कैद पिंजरों में इन्हें, कर लिया गर कैद पिंजरों में इन्हें, घर से चिड़ियों की चहक हो जाएगी। और शेर मुलायजा करें कि गर जड़ों में जंग यूं जारी रही, गर जड़ों में जंग यूं जारी रही, नर्म शाखों की लचक हो जाएगी। गर जड़ों में जंग यूं जारी रही, नर्म शाखों की लचक हो जाएगी। और शेर मुलायजा करें दोस्तों कि दिल लगाने के लिए इतना किया है, दिल लगाने के लिए इतना किया है, एक पुरानी याद को ताज़ा किया है। दिल लगाने के लिए इतना किया है, एक पुरानी याद को ताज़ा किया है। शोर से ही जी उठा हूँ मैं कभी तो, शोर से ही जी उठा हूँ मैं कभी तो, शोर ने अक्सर मुझे तन्हा किया है। शोर से ही जी उठा हूँ मैं कभी तो, शोर ने अक्सर मुझे तन्हा किया है। गैर वाजिब बात सबकी मान कर ही, गैर वाजिब बात सबकी मान कर ही, हर पराए को यहाँ अपना किया है। गैर वाजिब बात सबकी मान कर ही, हर पराए को यहाँ अपना किया है। मैं कहानी का वही किरदार जिसने, मैं कहानी का वही किरदार जिसने, आखिरी मंजर में सब अच्छा किया है। मैं कहानी का वही किरदार जिसने, आखिरी मंजर में सब अच्छा किया है। और एक गज़ल, आखिरी गज़ल के चंद शेर हैं, वो सुनाए बिना ना मुझे चैन है ना आप लोगों को आएगा। तो बिना ताकि मतलब मुलायजा करें कि कोई मौका नहीं छोड़ा कभी कातिल बनाने में, कोई मौका नहीं छोड़ा कभी कातिल बनाने में, गला घोटा है दिल का खूब दिल को दिल बनाने में, अकेलापन बना देता है इंसानों को फौलादी, अकेलापन बना देता है इंसानों को फौलादी, मगर सौ ताकतें लगती है एक बुजदिल बनाने में। अकेलापन बना देता है इंसानों को फौलादी, मगर सौ ताकतें लगती है एक बुजदिल बनाने में। कहीं तालीम ने आँखों के सब पर्दे हटा डाले, कहीं तालीम ने आँखों के सब पर्दे हटा डाले, कहीं तालीम का ही हाथ है जाहिल बनाने में। कहीं तालीम ने आँखों के सब पर्दे हटा डाले, कहीं तालीम का ही हाथ है जाहिल बनाने में। उसे लज्जत कहाँ मालूम होगी रह के छालों की, उसे लज्जत कहाँ मालूम होगी रह के छालों की,

0: ये फेस का देखिए उनका कमाल हुनर का सफ़े लफ्ज का तख्लीक इस्तेमाल है। एक आम शायर लफ्ज को उस्मानी लुगत के हदूद में इस्तेमाल करता है, मगर फेस ने उसे लगवी मफहूम से निकाल कर मानी की एक नई दुनिया में पहुंचा दिया है। जी हाँ, तो सामीन ये है फेज अहमद फेस। फेज अहमद फेस की गजलें, उनकी शायरी आप सभी को हमने बताई। दीजिए आपकी मेजबान शाइस्ता को इजाजत, क्योंकि वक्त हो चला है, तो वक्त कहता है कि अब अलविदा कहें।
1: सामीन, आज के इस प्रोग्राम में आपने सुना अविनाश जोशी साहब की बेहतरीन शायरी और हमने बहुत सारी गुफ्तगू की।
0: उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो दीजिए आपकी मेजबान शाइस्ता को इजाजत। शब्बा खैर।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जसकरण गोस्वामी का सितार पर बजाया राग पुरिया कल्याण।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जसकरण गोस्वामी का सितार पर बजाया राग पुरिया कल्याण। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैस

एकीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव

0: तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Drairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21.